नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ आपकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ वागड़ रेडियो पर। साथ ही साथ यूँ हम देख पा रहे हैं कि स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बज चुके हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोता साथियों, आज सभा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी से। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। अगला कार्यक्रम होगा इसी कड़ी में सच्चा बचपन। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर और इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोता साथियों, इसी के बाद हम रूबरू होंगे कार्यक्रम आपकी और हमारी आवाज़ यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज़, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर के साथ में। फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे अधिकार कानून नियमों से जुड़ा सच्चा स्वराज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और अंजलि पारशर। इसी क्रम में श्रोता साथियों, आगे बढ़ते हुए हम रुख करेंगे हमारी परंपराओं लोक राजस्थानी गीतों से जुड़ा कार्यक्रम लोक संगीत, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8:30 पर राजस्थानी गीतों के साथ में। श्रोता साथियों, फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मेरे साथ में यानी कि आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल के साथ में और मेरे साथ होगी हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर। आगे बढ़ते हुए हम सुन पाएंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर। श्रोता साथियों, फिर हम रूबरू होंगे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से, इसे लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 10:00 बजे। फिर इसी क्रम में हम रुक करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों, आप अपने फरमाइश के गीतों को सुन सकते हैं 11 से 1 बजे तक वागड़ रेडियो 90.8 FM पर और फरमाइश के गीतों को दे सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, यह तो थी हमारी आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज की सभा में सबसे पहले कार्यक्रम आराधना से।

जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है तो वो घटना उसके अंतर को झकझोर देती है। समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी होती है मनुष्य का हृदय भी उतना ही अधिक विरोध करता है। उस घटना के उत्तर में वो न्याय मांगता है और ये योग्य भी है। वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का अन्याय व्यक्ति की आस्था और विश्वास का नाश है। किंतु ये न्याय क्या है? न्याय का अर्थ क्या है? अन्याय करने वाले को अपने कार्य पर पश्चाताप हो।

0: और अन्याय भुगतने वाले के मन में फिर से विश्वास जगे समाज के प्रति। इतना ही अर्थ है ना न्याय का। किंतु जिसके हृदय में धर्म नहीं होता वो न्याय को छोड़कर बैर और प्रतिशोध को अपनाता है, हिंसा के बदले प्रतिहिंसा की भावना लेकर चलता है। स्वयं भोगी हुई पीड़ा से कहीं अधिक पीड़ा देने का प्रयत्न करता है और इस मार्ग पर चलते अन्याय को भुगतने वाला स्वयं अन्याय करने लगता है। शीघ्र ही वो अपराधी बन जाता है। अर्थात न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत कम अंतर होता है और इसी अंतर का नाम है धर्म। क्या ये सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
3: थारी में पासो लावो चूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
2: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन, तो आयरन तकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
3: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
2: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
3: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जाँच करावी सुवे।
2: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
3: होपे एनीमिया तक की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
2: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोन ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हम रेडियो हो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु गणिमान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम के भाई बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक ना विषय ने हाथी। तो भाई बोनो आज अमारी कार्यक्रम में आपते की बातचीत नो विषय है कि आपड़े जे भाई बोन है ई खरीफ सीजन आवाने पहले हूँ तैयारी करीने मैंने जिंदगी एणा नुं जे उत्पादन है ई एणा ने असल तरीका तकी मिली शके। तो आज कार्यक्रम में एणा विषय माते अमारी अबतकी घणा कनी वाते थाईगा पण कार्यक्रम शुरू करा एने पहले आपने हमरावी दा गीत ने मोरे करा आपड़ी वाते। तो बायन बोनू आप हमर दरेजू आपड़ू रेडियो आपड़ी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: ભાઈ બનુ ગીત તો એશું પૂર્ણ અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સબનું ઘણેમાં સ્વાગત કરો હો અમારે આજની કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જેમ કે ગીત કે પહેલે અમે આપને વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હો કે ખરીફ સિઝનની પહેલા તકીસ આપણે ભાઈ બનો હરતે તૈયારી કરી જેન તકી એણાનું ઉત્પાદન જે હે એ એણાને અસલ તરીકા તકી મળી શકે. તો અણા વિશે માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ તકી જોડી રહી સોહનજી. તો સપ્તી કી પહેલા આપણે હામરી લણાની વાત ને મોરે કરા આપણી વાતે. સર નમસ્કાર.
1: નમસ્કાર
0: સર, આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ વાગર રેડિયો પરિવાર મેં.
1: ધન્યવાદ
0: સર. જૈસા કી આજ આપ હમારી કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે જુડ રહે હૈ ઓર આજ હમારી કાર્યક્રમ મેં આપસે વાતચીત કા વિષય હૈ કે હમારે જો કિસાન ભાઈ બહેન હૈ વો આને વાલી ખરીફ કે સીઝન કી તૈયારી કિસ તરીકે સે કરે, ક્યા ક્યા કાર્ય યોજનાએ બનાએ જિસસે ઉનકા જો ઉત્પાદન હૈ વો ઉન્હે સહી માત્રા મેં મિલ પાએ.
1: સભી કિસાનો કો એક બાર પુનઃ નમસ્કાર. જૈસા કી હમારા જો ખરીફ સીઝન હૈ અભી ચાલુ હોને વાલા હૈ, બારિશ આને કી તૈયારી હૈ ઓર એસા મેં માનતા હું કી આપ સભીને અપને ખેત અચ્છી તરહ સે તૈયાર કર લીએ હોંગે.
0: બિલકુલ.
1: ઓર ખાદ જો દેશી ખાદ આપકો ડાલના થા વો કેડા વાલા વો આપ ડાલ ચુકે હોંગે ઓર અપના ખેત જો હૈ પૂરી તરહ સે જોત કે તૈયાર કિયા હોગા તાકી જૈસે હી બારિશ આયે બારિશ કા પાની જ્યાદા સે જ્યાદા ખેત કે અંદર જાય ઓર આપને જો પહેલે તૈયાર કરકે રખા હૈ વો ધૂપ મેં અચ્છી તરહ સે આપકા ખેત તપ ચુકા હૈ. इससे आपके जो भी हानिकारक जीव मिट्टी में है वो जीव जो या तो उड़ के बाहर चले गए या वो धूप की वजह से मर गए. और जो गहरी जुताई आपने करी है उससे जो फफूंदी नाशक जितने भी रोग आते हैं उनसे भी आपने अधिकतर जो है उससे भी निजात मिलती है. अभी आपको जैसे ही बारिश होगी उस समय बीज की व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण रहती है.
0: बिल्कुल.
1: और इसमें जो खरीफ की फसल है उसको किसानों का जुआ कहा जाता है इस फसल को. और जुआ इसीलिए कहते हैं कि अगर किसी ने जो बारिश आई और उस बारिश के उचित समय में जिसने भी बुआई कर ली तो वो जीत जाता है और जो पीछे रह जाता है वो बहुत सी बार जो है उसके उत्पादन नहीं होता है, या तो अतिवृष्टि बाद में होती है तो उसका बीज गल जाता है या फिर समय पे बुआई नहीं करने के कारण जो है उसको नुकसान उठाना पड़ता है या फसल में जैसे चारा ज्यादा हो जाएगा, खरपतवार ज्यादा हो जाएगा तो ऐसी परेशानियों से जूझना पड़ता है.
0: बिल्कुल.
1: तो समय काफी महत्वपूर्ण होता है तो इसलिए हमको सारी चीजें पहले व्यवस्थित करके रख देनी चाहिए. हमारे को हमारे खेत वाइज बीज को अलग रख देना चाहिए कि फला खेत में मैं ये फसल करूंगा, इसके साथ में ये मिक्स करूंगा, इसके लिए कितना बीज हमको चाहिए उस हिसाब से हम बीज की व्यवस्था करके पहले से रख दे ताकि बारिश होते ही तुरंत
0: हम
1: बुआई कर सके.
0: बिल्कुल.
1: और उसकी मात्रा भी जैसे मात्रा तो आप डिसाइड करते ही है पहले कि क्या कितना डालना. और अधिकतर बुआई में जो है अभी हमारे यहाँ पे जैसे कि सिंगल फसल है जैसे सोयाबीन का अभी काफी बड़ा है एरिया, लेकिन किसान साथियों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जो सोयाबीन है, सोयाबीन को कहते हैं कि तेल बनता है लेकिन हम हमारे घर के स्तर पे हम उसका तेल नहीं निकाल सकते, ये खाने के लिए काम में नहीं आता है, है ना. और दूसरा सिर्फ ये बाजार में बेचने के लिए ही काम है, एक तरह से नकदी फसल की तरह है.
0: बिल्कुल.
1: और इसमें जो है बहुत सारी संभावनाएं भी रहती है जैसे कि बारिश ज्यादा हो गई तो ये पूरी तरह से गल जाता, पूरी फसल बेकार हो जाती है. हम देखते हैं कि पूरे के पूरे खेत सूख जाते हैं.
0: बिल्कुल.
1: तो जो किसान सोयाबीन लगाने का सोच रहे हैं वो उसका एक एरिया आप थोड़ा कम करें और आप हंगणी खेती को उस खेत में एक खेत मान लो दो खेत आप सोयाबीन के करने वाले हैं आपने सोचा है तो एक खेत में आप हंगणी खेती करें.
0: बिल्कुल.
1: और हंगणी खेती को हमारे यहाँ वागड़ में हाथ हंगरिया भी बोलते हैं, मतलब अलग अलग तरह के जो बीज है जो हमारे परिवार की जरूरत है. इसमें आपका अनाज वाली फसलें आ गई, दाल वाली फसलें आ गई, तेल देने वाली फसलें आ गई, सब्जी की फसलें आ गई, फल देने वाली फसलें आ गई, तो इसमें सारी फसलों का जो मिश्रण करके और किसान लगाता है.
0: बिल्कुल.
1: और कुछ फसलें हैं वो लाइन में बुआई करता है और फिर उसके बाद में कुछ फसलें हैं वो बीच में छिड़काव करता है जो बहुत कम मात्रा में होती है। तो इस तरह से इसका ये फसल करने से जो जमीन का पूरा उपयोग होता है और जमीन के सभी हिस्से में कुछ न कुछ फसलें होती है, हर लेयर पे फसलें होती है।
0: बिल्कुल,
1: जमीन के नीचे हम देखेंगे कि रेंगने वाली फसलों में जैसे काचरा है, डांगरा है, ककड़ी है, ये ऐसे रहेगी। फिर थोड़ा ऊपर हम देखेंगे तो जैसे मूंगफली है, मूंग है, और इस तरह की फसलें रहेगी। फिर थोड़ा ऊपर हम देखेंगे तो आपका मक्का है, तुअर है, तिल है, इस प्रकार की फसलें होगी, है ना। और कुछ फसल ऐसी होगी जो लंबे समय तक चलती है और कुछ फसल है जो जल्दी पक जाती है। तो इसमें पकने की जो है वो भी समय लगातार, मतलब समय अलग अलग समय पे, ताकि ये इसीलिए कहते हैं कि एक बार उसमें आप फसल डालो, एक बार फसल करो और बार बार उसको काटो, जब भी आपके घर में जरूरत हो तब उसको निकाल के लाओ। और इसमें दूसरी बार क्या है कि जैसे निराई गुड़ाई वगैरह की ज्यादा समस्या नहीं आती, क्योंकि हर हिस्से पे कुछ ना कुछ फसलें रहती है। और जो नीचे बेल वाली जो फसलें हैं वो मल्चिंग वगैरह का काम भी कर देती, कम वर्षा होती है तो भी उसमें बहुत कुछ पक्के किसान के लिए निकल जाता, अगर कम वर्षा होती है तो भी बहुत कुछ निकलेगा और ज्यादा बरसात होगी तो भी बहुत कुछ निकलेगा।
0: बिल्कुल
1: एकदम किसान को शून्य कभी भी नहीं देगी ये फसल। तो मेरी अपील है आप सभी श्रोताओं से कि एक खेत में कम से कम आप इसको करें, आपकी ये परंपरागत पद्धति है और इसको करें और इसका बहुत सारा फायदा है। किसान सोचता है कि अरे यार ये जो है ये पूरा का पूरा घर में खाने के लिए उपयोग हो जाता है, मेरे बेचने के लिए कुछ बचता नहीं। लेकिन क्या किसान भाई जो खाने के लिए भी तो बाजार से खरीद के लाता है, और वो भी खाने के लिए कौन सा लाता है, जैसे कि व्यवसायी खेती करेंगे तो वो उसमें भरपूर केमिकल डालेंगे, है ना, भरपूर रासायनिक खाद डालेंगे, तो उससे आप जो आज के समय में जो बीमारियां हो रही है उससे तो आप अवगत हो। तो एक तरह से बीमारी आप बाजार से खरीद के लाने से अच्छा है कि हमारा एक खेत हम ये हाथ हंगरिया बोलते हैं या हांगणी बोलते हैं या हंगड़ी बोलते हैं, जो भी आपकी भाषा में बोलते होंगे, इस तरह की खेती आप करें। और इसमें मैंने देखा पिछले साल हमने सज्जनगढ़ में एक खेत में इसमें कितनी फसलें हम खा सकते हैं, तो जब हमने उसको देखा तो हमारे को उसमें से खाने वाली जो फसलें 35 फसलें उसमें से ऐसी निकली जिसको हम खा सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और उसका समय बोने के 15 दिन से वो खाने लायक हो जाती है, उसमें से चाहे हरी सब्जी है, हरी पत्तेदार सब्जियां है जो खाने के लिए निकलती है, बहुत सारी फसलें हम उसमें उगाते नहीं है फिर भी उसके अंदर उग जाती है और वो हमारे खाने के लिए काम में आती है, हमारे सब्जी बनाने के लिए काम में आती। इसके लिए मैं अपील करना चाहूंगा कि एक खेत उसके लिए आप आरक्षित रखें, बाकी आप बीज की तैयारी करके रखें और जैसे ही बारिश होवे आप तुरंत, जैसे ही आपका खेत बोने लायक होवे तुरंत बो दीजिए, तो उससे आपको काफी फायदा होगा।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने कार्यक्रम में हमें बताया कि हमें किस तरीके से आने वाली खरीफ सीजन की तैयारी करनी है और क्या क्या कार्य योजनाएं करनी है, और जैसा कि आपने बताया कि हमारे जो किसान भाई बहन है उन्हें हांगड़ी खेती करनी चाहिए ताकि इसके माध्यम से उन्हें कई सारे लाभ मिलते हैं। और हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को इस विषय के बारे में अवगत करवाते ही रहते हैं और उन्हें बताते रहते हैं कि इसके कई सारे लाभ हैं। हम देखते हैं कि इससे हमारे किसान भाई बहनों की आमदनी है वो भी नहीं रुकती है और हमारे घर का पोषण भी बना रहता है, जो कि अभी के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। तो सर, जैसा कि कार्यक्रम में आपने बातें बहुत अच्छी हमारे श्रोता साथियों को बताई है, तो अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से?
1: अंत में मैं यही संदेश देना चाहूंगा किसान साथियों को, समय से बुवाई करें और बारिश का पानी है उसको आप रोक के रखें, उसको व्यर्थ नहीं जाने दें और जल को बचत करें।
0: बिल्कुल। तो सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: धन्यवाद।
0: જીમ કે ભાઈ બોનો અવડે આપણે વ્યાસમાં સોહનજી સર જોડે ટકા હતા ને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકે કે બતાડ્યું કે આપણને કઈ કઈ તૈયારી કરવી હે ને હરતે આપણે હાંગણી ખેતી કરવી હે એમ તકી આપણે દેખંગા કે अगर कोई फसल खराब भी थी सा तो बीजी फसल तक ही अपना उत्पादन मिली सके आयना स्त्रोत अपने बनाता करेंगा। तो आशा कर रहा हूँ कि आ हंगरी बातें आपने गमी होंगा किम के अभी टाइम थी गयो है अपने अणस कार्यक्रम तक ही सूटा पड़वा तो सूटा तो पड़ पर साथ पहले हमरी लाइक और गीत ने मोरे पड़ा सूटा।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर हाजिर होते हैं तो हमारा आपसे बातचीत का एक नया विषय रहता है। आज भी कार्यक्रम में ऐसा ही एक नया विषय लेकर हम हाजिर हैं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सच्चा बचपन हमारे प्यारे बच्चों का कार्यक्रम है, क्योंकि एक माता पिता होने के नाते हम सभी की ये इच्छा होती है कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसा ही एक जरूरी विषय हम कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताएंगे। लेकिन जैसा कि श्रोता साथियों, आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में हम आपको पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं, तो पहले आइए मनोरंजन कर लेते हैं इस गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले मैंने आपको बताया था कि आज के इस कार्यक्रम में हम एक नए विषय को लेकर हाजिर हैं। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को अजनबियों से सावधान रहना हम कैसे सिखाएं, क्योंकि श्रोता साथियों, हम जैसा कि जानते हैं कि हमारी बच्चों की मासूमियत उनकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर उन्हें सही जानकारी न दी जाए तो यही मासूमियत खतरे में भी बदल सकती है साथियों, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे बच्चे इतने मासूम होते हैं कि उनकी मासूमियत का फायदा हर कोई उठा लेता है। जैसा कि हमारे बच्चों को चॉकलेट्स, खिलौने, बहुत कुछ चीजें पसंद होती हैं, और जो अजनबी होते हैं जो बच्चों के लिए खतरनाक है, वे इन्हीं चीजों का फायदा उठाकर हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज का हमारा कार्यक्रम इसी विषय पर आधारित है साथियों, तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
1: गुड़िया बेटा, कहाँ हो तुम?
2: मम्मी, मैं यहाँ हूँ, देखो मैंने क्या बनाया है।
1: अरे वाह, बहुत सुंदर ड्राइंग है, ये कौन है इसमें?
2: ये आप हो और ये मैं, और ये हमारा घर।
1: बहुत प्यारा है बेटा, लेकिन आज मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ।
2: क्या मम्मी?
1: बेटा, अगर कोई अजनबी तुम्हें कुछ दे, जैसे कि चॉकलेट और खिलौना, तो क्या करोगी?
2: शायद ले लूं।
1: नहीं बेटा, यही सबसे बड़ी गलती होती है। अजनबी कोई भी हो सकता है, वो अच्छा भी लग सकता है, लेकिन हमें सावधान रहना जरूरी है।
2: लेकिन मम्मी, अगर वो बोले कि आपको जानता है तो?
1: तब भी नहीं मानना है, जब तक मैं या तुम्हारे पापा खुद ना कहें। अगर कोई जबरदस्ती करे तो क्या करना है?
2: पता नहीं।
1: जोर से चिल्लाना है बेटा, और नहीं कहना है, और तुरंत वहां से भागना है।
0: बच्चों, आज हम एक बहुत जरूरी चीज पर बात करेंगे, पता है क्या?
2: क्या?
0: अजनबियों से हम कैसे बचे।
2: मैम, क्या हर अजनबी बुरा होता है?
0: नहीं गुड़िया बेटा, हर कोई बुरा नहीं होता, लेकिन हमें हर अजनबी से सावधान रहना चाहिए। जैसे कि अगर कोई तुम्हें अकेले में बुलाए, या कुछ देने की कोशिश करे, या तुम्हें कहीं ले जाने की बात करे, तो तुम क्या करोगी?
2: मना कर दूंगी।
0: बहुत अच्छा, अब एक और जरूरी बात बच्चों, गुड टच और बेड टच।
2: मैम, ये क्या होता है?
0: जब कोई आपको प्यार से छुए और अच्छा लगे तो वो हुआ गुड टच, लेकिन वहीं अगर कोई ऐसा छुए जिससे आपको बुरा लग रहा है या अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो वो हुआ बेड टच, और अगर ऐसा हो तो
2: ना कहेंगे, भागेंगे और बताएंगे।
0: शाबाश।
2: अरे वाह, कितना मजा आ रहा है।
3: बेटा, इधर आओ, ये चॉकलेट लो।
2: नहीं अंकल, मम्मी ने मना किया है।
3: अरे, मैं तुम्हारी मम्मी का दोस्त हूँ, उन्होंने ही भेजा है।
2: मम्मी ने कहा था किसी की बात पर भरोसा मत करना। नहीं, मैं आपको नहीं जानती।
3: चलो, मैं तुम्हें गुब्बारे दिलाता हूँ।
2: मुझे नहीं जाना, कोई है? बचाओ बचाओ।
1: गुड़िया, क्या हुआ?
2: मम्मी, एक आदमी मुझे ले जाने की कोशिश कर रहा था।
1: बेटा, तुम ठीक हो ना?
2: हाँ मम्मी, पर मैंने आपकी बात याद रखी।
1: मुझे तुम पे गर्व है, तुमने ना कहा, तुमने शोर मचाया, तुमने खुद को बचाया।
2: मम्मी, अगर मैं डर जाती तो?
1: इसलिए हम तुम्हें पहले से सिखाते हैं, ताकि तुम डर के बजाय समझदारी से काम लो।
0: बच्चों, आज गुड़िया ने हमें सिखाया है कि साहस और समझदारी से हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो गुड़िया, बताओ कि हमें क्या करना चाहिए?
2: हाँ मैम, अजनबी से कुछ नहीं लेना, कहीं नहीं जाना, और हमेशा ना कहना।
0: ये हुई ना बात गुड़िया, तुमने बिल्कुल सही किया। अगर ऐसे ही सारे बच्चे करेंगे तो अजनबी हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो श्रोता साथियों, ये था हमारा आज का रेडियो नाटक कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को अजनबियों से सुरक्षित रहना सिखा सकते हैं। जैसा कि नाटक के माध्यम से भी हम समझ पाए हैं कि गुड़िया, जो कि एक बहुत ही बहादुर बच्ची है, जिसने हिम्मत के साथ सबसे पहले तो अपनी मम्मी की सारी बातों को सुना, और समझा भी, लेकिन जब वही समय उसके सामने भी आया तो उसने बिना डरे साहस के साथ उस अजनबी का सामना किया और सुरक्षित रही। तो बच्चों, कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ होता है तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, जैसा गुड़िया ने किया बिल्कुल वैसा ही करना है। ना कहना है, उनसे कोई भी चीज नहीं लेनी है और चिल्लाना है। तो श्रोता साथियों, इस नाटक से हम ये समझ पाए हैं कि बच्चों को डराना नहीं है बल्कि समझाना जरूरी है, उन्हें ना कहना सिखाना भी जरूरी है। और सबसे जरूरी बात श्रोता साथियों, जो कि आप अपने बच्चों को बताएं, उन्हें ये भरोसा दें कि वो खुलकर आपसे बात कर सके। ऐसे में याद रखें श्रोता साथियों, सावधानी ही सुरक्षा है और जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार। तो इन्हीं महत्वपूर्ण बातों के साथ अब मैं कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेने की अनुमति आपसे चाहूंगी। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी साथियों, एक और गीत के साथ में।

तो श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम के नाटक के माध्यम से जो हमें संदेश मिला है वो आप अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे और अपने बच्चों को भी इस चीज के लिए सतर्क रहना सिखाएंगे। तो जैसा कि बातें हो चुकी है, समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। हमारी ईमेल आईडी भी लिख लीजिए साथियों, क्योंकि इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें बता सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम सच्चा बचपन में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार। साथ ही आप सभी को छोड़े चलते हैं साथियों एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करूँ, थोड़ू सी व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपना वंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोनो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना ना कदम है, ई अब्बा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल।
1: मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट।
2: और मैं हूं आप सभी के साथ दोस्तों आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर। स्वीकार कीजिएगा दोस्तों हम दिनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में।
2: जी हाँ।
1: आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातचीत रहने वाली है कि जब हम सहज होते हैं तभी अपने भीतर की ताकत को पहचान पाते हैं।
2: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, आज की दुनिया भागदौड़, प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाओं से भरी हुई है। हर व्यक्ति खुद को साबित करने की कोशिश में लगा है। कोई नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहा है मनीषा, तो कोई परीक्षा में सफलता के लिए,
2: बिल्कुल,
1: तो कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन कशिश, इस दौड़ में अक्सर हम एक महत्वपूर्ण चीज है वो खो देते हैं, वो है अपनी सहजता।
2: बिल्कुल,
1: हम इतने तनाव में जीने लगते हैं श्रोता साथियों कि अपने भीतर मौजूद क्षमताओं को पहचान ही नहीं पाते। जबकि सच्चाई ये है कि मन जितना शांत और सहज होगा हमारी सोच उतनी ही स्पष्ट होगी और हमारी शक्ति उतनी ही अधिक दिखाई देगी।
2: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर हम हमारे युवा साथियों से ढेर सारी बातें जरूर करेंगे।
1: बिल्कुल,
2: लेकिन जैसा कि शुरुआत में हम उन्हें पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं, तो आज भी शुरुआत में श्रोता साथियों को सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल,
2: तो दोस्तों आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त जागृति भट्ट के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं, जब आप सहज होते हैं तभी अपने भीतर की ताकत को पहचान पाते हैं।
1: जी हाँ
0: कशिश और जागृति जी, हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में सफलता, आत्मविश्वास और खुशहाली का सबसे बड़ा आधार उसकी आंतरिक शक्ति होती है।
2: बिल्कुल,
0: प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अपार क्षमता और अद्भुत शक्तियाँ छिपी होती हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अक्सर लोग उन्हें पहचान नहीं पाते हैं।
2: जी हाँ।
0: इसका मुख्य कारण श्रोता साथियों यह है कि वे अपने जीवन में तनाव, भय, चिंता और दूसरों से तुलना करने में उलझे रहते हैं।
1: जी हाँ।
0: जब मन अशांत होता है साथियों, तब व्यक्ति अपनी वास्तविक शक्ति को नहीं देख पाता। उसके विपरीत जब व्यक्ति सहज, शांत और स्वाभाविक रहता है जागृति जी, तब वह अपने भीतर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने लगता है।
1: जी बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। ऐसे में श्रोता साथियों, जब हमारा मन शांत होता है, विचार हमारे स्पष्ट होते हैं और हम स्वयं को स्वीकार करना जानते हैं, तभी हम अपनी वास्तविक पहचान बना पाते हैं।
2: बिल्कुल,
1: कह सकते हैं कि सहजता केवल एक अवस्था नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। श्रोता साथियों, ये हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है और हमारे भीतर छिपी असीम संभावनाओं का परिचय कराती है।
2: जी हाँ।
1: हम देखते हैं कि सहजता का मतलब है स्वयं के साथ स्वाभाविक होना,
2: बिल्कुल
1: बिना किसी दिखावे के, बिना किसी डर के और बिना किसी बनावट के जीवन जीना। जागृति जी।
2: जी हाँ कशिश, क्योंकि सहजता यानी कि आलस्य या लापरवाही नहीं है। सहजता का अर्थ स्वयं के साथ स्वाभाविक होना, जैसा कि आपने बताया था, बिना दिखावे के, बिना आवश्यक डर के, बिना किसी बनावटीपन के जीवन जीना। श्रोताओं, जब व्यक्ति हर समय चिंता में रहता है तब उसका मन बिखर जाता है।
1: बिल्कुल,
2: वो अपनी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा डर, तनाव और नकारात्मक सोच में खर्च कर देता है। मनीषा,
1: बिल्कुल,
2: कई बार हम देखते हैं कि किसी काम को इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे।
1: बिल्कुल,
2: हम अपनी गलतियों से इतना डर जाते हैं कशिश की कोशिश ही नहीं करते। धीरे धीरे ये डर हमारे आत्मविश्वास को कम कर देता है। लेकिन श्रोता साथियों, जब हम सहज रहते हैं तब हम गलतियों को सीखने का अवसर समझते हैं।
1: जी हाँ।
2: हम हर चुनौती को खुले मन में स्वीकार करते हैं।
1: बिल्कुल,
2: इसीलिए आपसे कहना चाहेंगे श्रोताओं कि डर शक्ति को छिपाता है और सहजता शक्ति को जगाता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर छिपी होती है शक्ति। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को कुछ विशेष गुणों के साथ बनाया होता है।
1: बिल्कुल,
0: किसी में नेतृत्व की क्षमता होती है, किसी में कला का कौशल होता है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है तो कोई लोगों की मदद करने में कुशल होता है।
1: जी जी।
0: कोई कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच रखता है। लेकिन श्रोता साथियों, इन गुणों को पहचानने के लिए मन का शांत और सहज होना बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल
1: बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा। इसी के साथ अगर बात करें सहजता और आत्मज्ञान के संबंध की, तो देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसकी आत्मसमझ होती है। जब हम श्रोता साथियों लगातार तनाव, चिंता और तुलना में जीते हैं, तब हमारा ध्यान बाहर की दुनिया पर केंद्रित रहता है।
2: बिल्कुल,
1: लेकिन जब हम सहज होते हैं तब हमारा ध्यान भीतर की ओर जाता है। हम देखते हैं कि यही वह क्षण होता है जब हम ये समझते हैं कि हमारी वास्तविक रुचि क्या है, हमारी विशेषताएं क्या है, हमारी कमजोरियां क्या है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
2: बिल्कुल कशिश।
1: ऐसे में जागृति जी, सहजता हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है और आत्मज्ञान ही है जो शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है।
2: बिल्कुल कशिश, क्योंकि जरा हम प्रकृति को देख लेते हैं। सूरज बिना किसी घबराहट के रोज उगता है, नदी बिना रुके बहती रहती है, पेड़ बिना किसी दिखावे के फल देता है।
1: बिल्कुल
2: श्रोताओं, प्रकृति का हर तत्व सहज है, इसलिए वो अपनी पूरी क्षमता से कार्य करते हैं। यदि नदी ये सोचने लगे कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे तो वो बहना छोड़ देगी। यदि पेड़ ये सोचने लगे कि फल देने से क्या होगा तो वो सूख जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य भी जब अपनी सहजता खो देता है तब उसकी प्रगति रुकने लगती है।
1: बिल्कुल
2: श्रोताओं, आपसे कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि युवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर होता है।
1: बिल्कुल,
2: इस समय सपने बनते हैं और भविष्य की नींव रखी जाती है।
1: बिल्कुल,
2: लेकिन आज का युवा अक्सर तुलना में उलझ जाता है कशिश और मनीषा। सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर वो स्वयं को कमतर समझने लगता है। वो सोचता है उसे भी वैसा ही दिखना चाहिए जैसा वो बनना चाह रहा है।
1: बिल्कुल,
2: यहीं से वो असहजता शुरू हो जाती है।
1: बिल्कुल,
2: जबकि हर व्यक्ति की अपनी अलग क्षमता होती है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई खेल में अच्छा होता है और कोई कला में। तो हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि जब युवा स्वयं को स्वीकार करता है तभी वो अपनी असली ताकत पहचान पाता है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि तनाव वो हमारी शक्ति को छुपा देता है।
2: बिल्कुल,
0: जब व्यक्ति अत्यधिक तनाव में रहता है तो उसके सोचने और समझने की क्षमता भी प्रभावित होती है।
1: बिल्कुल,
0: उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है, निर्णय लेने में कठिनाइयां होती है और छोटी छोटी समस्या भी बड़ी लगने लगती है। मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है। श्रोता साथियों, ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी क्षमताओं को भूल जाता है।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए अपनी ताकत को पहचानने के लिए तनाव मुक्त रहना बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो जैसा कि युवा साथियों से हमारी कार्यक्रम के माध्यम से बातें बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना एक और प्यारे से गीत के साथ मनोरंजन करवाएं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत।

0: साथियों, इस गीत के साथ फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। हमारी बातें चल रही थी इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जब हम सहज होते हैं तभी अपने भीतर की ताकत को पहचान पाते हैं। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, ये धीरे धीरे ही विकसित होता है। जब हम अपने विचारों और क्षमताओं को स्वीकार करते हैं मनीषा और कशिश, तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तब सहजता भी अपने आप बढ़ने लगती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि सहजता है वो हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। जो व्यक्ति सहज रहता है वो स्वयं पर विश्वास करना सीख जाता है, उसे अपने कमियों का ज्ञान हो जाता है और साथ ही वो अपनी खूबियों को पहचानने लगता है। असफलताओं से डरता नहीं है बल्कि नए अवसरों का स्वागत करता है। श्रोता साथियों, यही आत्मविश्वास उसके आंतरिक शक्ति को बाहर लाने का काम करता है।
2: जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। इसी के साथ अगर तुलना की बात की जाए तो ऐसा बताया जाता है कि तुलना हमें कमजोर बनाती है।
0: बिल्कुल
2: साथियों, आज सोशल मीडिया ने तुलना को एक जीवन का हिस्सा बना दिया है।
1: जी,
2: कोई किसी की सफलता देख रहा है, कोई किसी की नौकरी, तो कोई किसी की सुंदरता पर ध्यान दे रहा है। जागृति जी, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोकप्रियता से जलते हैं।
0: बिल्कुल
2: श्रोता साथियों, धीरे धीरे व्यक्ति स्वयं को इन सभी चीजों को देखकर कमतर समझने लगता है। लेकिन जब हम सहज होते हैं तब हमें ये समझ आ जाता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है।
1: बिल्कुल
2: एक पेड़ आम देता है तो दूसरा पेड़ नीम देता है दोस्तों। दोनों की

0: बिल्कुल,
1: जब संकट आता है तब घबराहट हमारी सोचने की क्षमता कम कर देती है, लेकिन यदि हम सहज बने रहे तो हमारा मन समाधान खोजने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: और जैसा कि कहा गया है कि मुश्किलें ताकत को नहीं रोकती, घबराहट रोकती है।
2: बिल्कुल जागृति जी, यही अगर हम बात करें कि युवाओं के लिए सहजता क्यों आवश्यक है, तो हम देखते हैं कि आज का युवा अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है।
1: बिल्कुल,
2: प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव, करियर की चिंता, सोशल मीडिया का प्रभाव, परिवार और समाज की अपेक्षाएं, साथ ही रोजगार की चुनौतियां, इन सभी परिस्थितियों में यदि युवा स्वयं को सहज रखे तो वह बेहतर निर्णय ले सकता है और अपनी प्रतिभा का सही उपयोग कर सकता है।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा। इसी के साथ तनाव हमारी शक्ति को ढक देता है साथियों। अगर इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझे तो कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक साफ झील है। जागृति जी, जब झील का पानी शांत होता है तब उसका तल स्पष्ट दिखाई देता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन वहीं जब पानी में लहरें उठती है तब हमें कुछ भी साफ नहीं दिखाई देता। दोस्तों, हमारा मन भी उसी झील की तरह है। तनाव, डर, क्रोध और चिंता मन में लहरें पैदा करते हैं और इन लहरों के कारण हम अपनी वास्तविक क्षमता नहीं देख पाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: वहीं जब हमारा मन शांत और सहज होता है साथियों, तब हमारी आंतरिक शक्तियां हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है।
1: जी हाँ,
0: जी हाँ। देखा जाता है कि अधिकांश युवा साथी असफलता से डरते हैं, लेकिन हमारे युवाओं को हम बताना चाहेंगे कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता केवल प्रतिभा से मिलती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि सफलता के लिए मानसिक संतुलन और सहजता भी उतना ही जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: कई प्रतिभाशाली लोग केवल इसीलिए पीछे रह जाते हैं मनीषा, क्योंकि वे अपने डर और तनाव पर नियंत्रण नहीं रख पाते। दूसरी ओर कई सामान्य लोग अपनी सहजता, धैर्य और निरंतर प्रयास से असाधारण सफलता प्राप्त कर लेते हैं।
0: जी हाँ,
1: तो कशिश और मनीषा, हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि सफलता केवल ये नहीं है कि हम कितना जानते हैं, बल्कि यह भी कि हम दबाव में कितना शांत रह सकते हैं। श्रोताओं, आपको दुनिया में किसी और जैसे बनने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल अपने भीतर छिपे उस व्यक्ति को पहचानना है जो अद्वितीय है, सक्षम है और संभावनाओं से भरा हुआ है।
0: बिल्कुल,
1: अपने मन से डर का बोझ हटाइए, स्वयं को स्वीकार कीजिए, अपनी गलतियों को शिक्षक बनाइए, अपने सपनों पर विश्वास कीजिए। याद रखिए, जिस दिन आप स्वयं के साथ सहज हो जाएंगे उसी दिन आपको अपनी वास्तविक शक्ति दिखाई देने लगेगी।
0: बिल्कुल,
1: आप समझ पाएंगे कि जिन कठिनाइयों को आप पहाड़ समझते थे वे वास्तव में आपके साहस के सामने बहुत छोटी है।
2: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे, जब व्यक्ति सहज होता है तभी अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को पहचान पाता है।
0: बिल्कुल,
2: तनाव, भय और तुलना हमारी क्षमताओं पर पर्दा डाल देते हैं, जबकि सहजता उन्हें उजागर करती है।
0: बिल्कुल,
2: युवाओं को चाहिए कि वे स्वयं पर विश्वास रखें, अपने मन को शांत रखें और जीवन की चुनौतियों का सामना साहसपूर्वक करें।
0: जी
2: प्रत्येक
0: हाँ।
2: युवा के भीतर अपार शक्ति होती है साथियों, आवश्यकता केवल उन्हें पहचानने और सही दिशा में उपयोग करने की है।
1: बिल्कुल,
2: याद रखिए साथियों, हमारी सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपी होती है और उसे पहचानने का मार्ग सहजता से होकर गुजरता है।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा। तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में युवा साथियों से हमारी बातें चल रही थी कि जब हम सहज होते हैं तब अपने भीतर की जो ताकत है हम उसे अच्छी तरीके से पहचान पाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो बातें जैसा कि ढेर सारी हुई और अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: तो जागृति जी और मनीषा, कार्यक्रम से हम विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे युवा साथियों को एक और प्यारा सा गीत सुनवाए।
1: जी
2: बिल्कुल
1: हाँ।
2: कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागुटेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। अंत में बस आपसे यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि सहजता कमजोरी नहीं है, आत्मबल का सबसे सुंदर रूप है।
1: बिल्कुल।
0: जो स्वयं के साथ सहज हो जाता है वो जीवन की हर चुनौती पर विजय पा लेता है। अपनी पहचान दूसरों की नजरों में नहीं अपने भीतर खोजिए। यकीन मानिए, आपके अंदर ऐसी शक्ति छिपी है जो आपके हर सपने को हकीकत में बदल सकती है।
1: जी हाँ,
0: आपसे कहना चाहेंगे सहज बने, सजग बने, स्वयं को पहचाने, भीतर की शक्ति को जगाए और जीवन को महान बनाए। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ विदा लेते हैं। आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
2: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdara.org।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
2: और आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल,
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। साथियों आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नया विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातचीत रहने वाली है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़कर जाएंगे।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, जब हम अपने जीवन की यात्रा पूरी करेंगे तब आने वाली पीढ़ियां हमारे बारे में क्या कहेंगी। क्या हम उनके लिए केवल ऊंची इमारतें, सड़कें और भौतिक सुविधाएं छोड़कर जाएंगे, या फिर ऐसे मूल्य, ऐसी सोच और ऐसा समाज भी छोड़ेंगे जो उन्हें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे।
0: बिल्कुल
1: अंजलि, मनुष्य का जीवन तो सीमित है लेकिन हमारे जो कर्मों का प्रभाव पीढ़ियों तक बना रहता है। हमारे पूर्वजों ने हमें भाषा, संस्कृति, परंपराएं, खेल, जंगल, नदियां और सामाजिक मूल्य सौंपे हैं।
0: बिल्कुल
1: आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी आने वाली पीढ़ियों को ऐसा भविष्य दे जिस पर हमें गर्व हो सके। यही सच्चे स्वराज का आधार है, केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि भविष्य के समाज के लिए भी जिम्मेदारी निभानी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें बनी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम के पहले इस गीत को।
1: बिल्कुल

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले बातें भी रही थी और विषय भी अवगत करवाया था कि आज बातें रहने वाली है, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़ कर जाए।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि, आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी विरासत एक सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण हो सकता है। यदि हम आज जंगलों को काट देंगे, नदियों को प्रदूषित कर देंगे और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करेंगे तो भविष्य की पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ बनाने की कोशिश करता है। कोई घर बनाता है, कोई व्यापार खड़ा करता है, कोई धन कमाता है तो कोई प्रतिष्ठा अर्जित करता है।
0: बिल्कुल।
1: हम अपने बच्चों और परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे हमें समय समय पर खुद से पूछना चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: वह है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़कर जाएं। श्रोता साथियों, क्या हम केवल जमीन जायदाद छोड़कर जाएंगे? क्या हम केवल बैंक बैलेंस और भौतिक सुविधाएं छोड़कर जाएंगे? या फिर एक ऐसा समाज, ऐसे संस्कार, ऐसा वातावरण, ऐसे मूल्य छोड़कर जाएंगे जो आने वाली पीढ़ियों को वास्तव में बेहतर बना सके?
0: बिल्कुल।
1: अक्सर विरासत का अर्थ जागृति जी धन दौलत, मकान, खेत या कारोबार से लगाया जाता है। यह महत्वपूर्ण जरूरी है, लेकिन यह पूरी विरासत नहीं है। कई ऐसे परिवार हैं जिसके पास अपार संपत्ति थी लेकिन अच्छे संस्कार नहीं थे। परिणाम यह हुआ कि पीढ़ियों के बीच मतभेद बढ़े और परिवार बिखर गया।
0: बिल्कुल।
1: वहीं दूसरी ओर ऐसे परिवार भी हैं जिनके पास सीमित संसाधन थे लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को ईमानदारी, मेहनत, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की शिक्षा दी। ऐसे परिवार पीढ़ियों तक सम्मान पाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: सच्ची विरासत श्रोता साथियों वही है जो समय के साथ और मूल्यवान होती जाए, न कि वह धीरे धीरे समाप्त हो जाए।
0: जी हाँ अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि श्रोता साथियों, धरती केवल हमारी नहीं है, ये उन बच्चों की भी है जो अभी जन्मे नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: उन्हें स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और हरियाली से भरपूर वातावरण मिलना चाहिए। यदि हम पेड़ लगाते हैं, जल संरक्षण करते हैं अंजलि, और पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम वास्तव में भविष्य के लिए अमूल्य उपहार छोड़ रहे होते हैं। जैसे कहा भी गया है कि पेड़ बचाएंगे, जल बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सजा पाएंगे।
1: जी जी।
0: धन दौलत समय के साथ समाप्त हो सकते हैं लेकिन संस्कार पीढ़ियों तक चलते हैं। यदि माता पिता और समाज बच्चों को ईमानदारी, करुणा, सम्मान और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाते हैं तो यही मूल्य आगे भी जीवित रहते हैं।
1: जी।
0: आज के समय में अंजलि हम देखते हैं कि तकनीक और आधुनिकता के साथ साथ मानवीय मूल्यों का संरक्षण भी बहुत जरूरी है। यदि हम अपने बच्चों को केवल सफल बनाना सिखाएंगे श्रोताओं और अच्छा इंसान बनाना नहीं सिखाएंगे तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा उपहार है अच्छे संस्कार, क्योंकि यही उन्हें सही और गलत के बीच अंतर समझने की शक्ति देता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, यदि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ सबसे मूल्यवान छोड़ सकते हैं तो वह अच्छे संस्कार ही है। बच्चे वही सीखते हैं जो घर में देखते हैं।
0: बिल्कुल।
1: यदि वे बड़ों का सम्मान देखेंगे तो सम्मान करना सीखेंगे। यदि वे ईमानदारी देखेंगे तो ईमानदार बनेंगे। यदि वे सहयोग और सेवा का भाव देखेंगे तो समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। श्रोता साथियों, संस्कार किसी पुस्तक में नहीं मिलते, वे परिवार के व्यवहार से बनते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए हमें यह सोचना होगा जागृति जी कि हम अपने बच्चों को केवल सुविधाएं दे रहे हैं या जीवन जीने के सही मूल्य भी दे रहे हैं। कल्पना कीजिए श्रोता साथियों कि हम अपने बच्चों के लिए बड़ा घर बना दें लेकिन पीने का पानी साफ न बचे, हम उन्हें आधुनिक सुविधाएं दे दें लेकिन सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा न बचे, तो क्या ऐसी विरासत वास्तव में उपयोगी होगी? ये जागृति जी हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है।
0: जी हाँ,
1: आज पृथ्वी कई चुनौतियों का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन, जल संकट, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। यदि हम इन समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां हमें शायद इस बात के लिए याद करेंगी कि हमने सुविधाएं तो बढ़ा दी है लेकिन प्रकृति को बचा नहीं पाए।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए पेड़ लगाना, जल संरक्षण करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और पर्यावरण की रक्षा करना केवल वर्तमान की जरूरत नहीं बल्कि भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी है।
0: जी हाँ अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चली रही हैं, तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: जागृति जी, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें कि एक बेहतर समाज भी विरासत है। यानी कि दोस्तों, हम अपने बच्चों के लिए कैसा समाज छोड़कर जाना चाहते हैं? क्या ऐसा समाज जहां लोग एक दूसरे पर भरोसा न करें, जहां संवाद की जगह विवाद हो, जहां संवेदनशीलता की जगह स्वार्थ हो, या फिर ऐसा समाज जहां सहयोग सम्मान हो और मानवीय रिश्तों की गर्माहट हो?
1: बिल्कुल,
0: एक अच्छा समाज अपने आप नहीं बनता, उसे बनाने के लिए हर पीढ़ी को योगदान देना पड़ता है। आज जो हम बेहतर व्यवहार हर किसी के साथ करते हैं, वही आने वाले समाज की नींव बनाता है। जागृति जी कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि धन खत्म हो सकता है, लेकिन ज्ञान पीढ़ियों तक जीवित रहता है।
1: बिल्कुल,
0: यदि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा, सीखने की आदत और सही सोच दे सके तो यह उनकी सबसे बड़ी संपत्ति होगी। शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं है, शिक्षा व्यक्ति को सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। इसलिए हमें आने वाली पीढ़ियों को केवल डिग्री नहीं बल्कि सीखने की संस्कृति भी देनी होगी।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य की उपेक्षा बढ़ती भी जा रही है। यदि हम आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ आदतें नहीं देंगे तो उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल,
1: योग, व्यायाम, संतुलित आहार और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता एक महत्वपूर्ण विरासत हो सकती है। स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज और राष्ट्र का निर्माण करता है।
0: जी हाँ,
1: हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। लोक कला, लोक भाषाएं, त्योहार, पारंपरिक ज्ञान और सामाजिक मूल्य हमारी अमूल्य धरोहर है। आधुनिकता को अपनाना आवश्यक है, लेकिन अपनी जड़ों से कट जाना उचित नहीं है। यदि हम अपनी संस्कृति को सहज कर आगे बढ़ाएंगे श्रोताओं, तो आने वाली पीढ़ियां अपनी पहचान को गर्व से स्वीकार कर पाएगी।
0: बिल्कुल
1: अंजलि, आने वाली पीढ़ी को केवल अधिकारों की नहीं बल्कि कर्तव्यों की भी समझ होनी चाहिए। मतदान करना, कानून का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना अच्छे नागरिक की पहचान है।
0: बिल्कुल,
1: यदि हम अपने बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देंगे तो देश का भविष्य और अधिक मजबूत होगा।
0: जी हाँ जागृति जी, आज की तेज रफ्तार दुनिया में सफलता को अक्सर धन और प्रसिद्धि से जोड़ा जाता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जीवन का वास्तविक आधार मूल्य होते हैं। सत्य, ईमानदारी, करुणा, सहिष्णुता, सहयोग और जिम्मेदारी जैसे मूल्य व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं। यदि आने वाली पीढ़ियां इन मूल्यों के साथ आगे बढ़ेंगी तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकेंगी।
1: बिल्कुल,
0: सच्चा स्वराज केवल वर्तमान की सुख की बात नहीं करता, यह आने वाले कल के प्रति हमारी जिम्मेदारी की बात करता है। स्वराज का अर्थ है कि हम अपने निर्णयों के दूरगामी परिणामों को समझें। जब हम साधनों का उपयोग करें तो सोचें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बचेगा। जब हम समाज में कोई कदम उठाएं तो सोचें कि उसका प्रभाव भविष्य पर क्या होगा। यही दूरदर्शिता जागृति जी सच्चे स्वराज की पहचान है।
1: जी हाँ,
0: हमें हमारे जो बच्चे हैं या आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए स्वच्छ जल, स्वच्छ पर्यावरण, अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य, शिक्षा और ज्ञान, जिम्मेदारी, अनुशासन, प्रेम, आपसी सहयोग और सामुदायिक भावना, स्वास्थ्य, सामाजिक वातावरण, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, सत्य और ईमानदारी जैसी चीजें जो हैं वो विरासत में छोड़कर जानी है। ये ऐसी विरासतें हैं श्रोता साथियों जो समय के साथ और अधिक मूल्यवान होती जाती हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहेंगे कि जब इतिहास हमारे समय को याद करेगा तब वो केवल ये नहीं देखेगा कि हमने कितना कमाया या कितनी सुविधाएं जुटाई थी, वो ये भी देखेगा कि हमने आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी दुनिया छोड़ी थी। क्या हम उन्हें प्रदूषित नदियां, कटते जंगल, टूटते रिश्ते और बिखरते मूल्य देंगे, या फिर स्वच्छ पर्यावरण, मजबूत संस्कार, शिक्षा, ईमानदारी, सद्भावना और आत्मनिर्भरता की ऐसी विरासत देंगे जो उनके जीवन को बेहतर बनाए।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, सच्चा स्वराज केवल वर्तमान को सुधारने का नाम नहीं है। सच्चा स्वराज वो है जिसमें हम भविष्य की पीढ़ियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और ऐसा समाज बनाकर जाए जहाँ हर बच्चा सम्मान, अवसर और सुरक्षित वातावरण के साथ अपना जीवन जी सके।
0: बिल्कुल,
1: तो श्रोता साथियों, हम अपने पीछे केवल यादें नहीं बल्कि ऐसी सकारात्मक विरासत छोड़कर जाएंगे जो आने वाली पीढ़ियों के जीवन को प्रकाश से भर दे।
0: जी जी।
1: हमारी सबसे बड़ी विरासत हमारी संपत्ति नहीं, हमारे संस्कार है। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हमारा पद नहीं, हमारा योगदान है। और हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम आने वाली पीढ़ियों को हमसे बेहतर दुनिया दे कर जाए।
0: बिल्कुल,
1: ऐसा कल बना कर जाए अंजलि जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर पाए।
0: जी हाँ जागृति जी, एक दिन हम सभी इस दुनिया से चले जाएंगे, हमारे पद, हमारी प्रसिद्धि, हमारी संपत्ति यहीं रह जाएगी, लेकिन हमारे कर्म, हमारे मूल्य, हमारी सोच और हमारे द्वारा बनाया गया वातावरण आने वाली पीढ़ियों के जीवन को प्रभावित करता रहेगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और उनके बच्चे एक बेहतर दुनिया में जीवन बिताएं तो हमें आज से ही उस दुनिया का निर्माण शुरू करना होगा।
1: बिल्कुल,
0: यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी और यही सच्चे स्वराज का मार्ग भी होगा।
1: जी हाँ, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की और आप देख पा रहे हैं कि समय उजला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी हाँ,
1: विदा जरूर लेंगे पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथ ही उस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagthara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाक रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है बदलते मौसम में स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें। हम देखते हैं कि मौसम प्रकृति का नियम है।
0: जी हाँ।
1: कभी गर्मी बढ़ती है, कभी बारिश आती है, तो कभी सर्दी दस्तक देती है, लेकिन मौसम में अचानक होने वाले बदलाव हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं।
0: जी हाँ।
1: यही कारण है कि मौसम बदलते ही सर्दी, जुखाम, बुखार, एलर्जी, खांसी, वायरल संक्रमण, पेट की समस्या और त्वचा संबंधित परेशानियां बढ़ने लगती है।
0: जी हाँ।
1: ऐसे समय में श्रोता साथियों, यदि हम थोड़ी सी सावधानी बरतें और अपने स्वास्थ्य का सही ध्यान रखें तो कई बीमारियों से बच सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: तो आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि बदलते मौसम में स्वस्थ रहने के लिए किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल।
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं मौसम परिवर्तन का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि मौसम परिवर्तन का सीधा प्रभाव हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। तापमान, आर्द्रता और वातावरण में होने वाले बदलाव शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं।
1: जी हाँ,
0: कई बार हम देखते हैं कि शरीर अचानक हुए परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को ढाल नहीं पाता, जिसके कारण कई बीमारियों का खतरा है वो बढ़ने लगता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, बदलते मौसम में बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को विशेष सावधानी रखने की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल मनीषा,
0: इस समय संक्रमण तेजी से फैलता है और छोटी छोटी लापरवाहियां भी बड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है।
1: जी हाँ मनीषा, हम देखते हैं कि हमारा शरीर एक निश्चित तापमान और वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेता है, लेकिन जब मौसम अचानक बदलता है तो शरीर को नए वातावरण के अनुसार ढलने में समय लगता है।
0: जी हाँ,
1: उदाहरण के लिए गर्मी से बारिश के मौसम में आने पर संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
0: जी,
1: सर्दी शुरू होते ही खांसी और जुखाम की समस्या बढ़ जाती है। मौसम में नमी बढ़ने से बैक्टीरिया और वायरस जैसी चीजें जो हैं वो तेजी से फैलती हैं।
0: जी हाँ,
1: धूल और पराकरण बढ़ने से एलर्जी की समस्या हो सकती है, इसलिए बदलते मौसम को हल्के में लेना ठीक नहीं है।
0: जी
1: कहना
0: हाँ,
1: चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि स्वस्थ रहने की सबसे बड़ी कुंजी है मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता। जब हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है मनीषा, तो शरीर रोगों से बेहतर तरीके से लड़ पाता है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए संतुलित भोजन ले, मौसमी फल और सब्जियां खाएं, पर्याप्त पानी पिए, नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद जैसे फल शरीर को आवश्यक विटामिन और पोषक तत्व प्रदान करते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि बदलते मौसम में लोग अक्सर पानी भी कम पीते हैं। विशेष रूप से श्रोता साथियों, गर्मी के मौसम में आपको पानी का ध्यान रखना है।
1: जी जी,
0: हम देखते हैं कि पानी शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है और पाचन क्रियाओं को सुचारू रूप से बनाए रखता है। श्रोता साथियों, इसके अलावा यह शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। आपसे कहना चाहेंगे कि प्रतिदिन हमें कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, यदि साधारण पानी पीने से कठिनाइयां हो तो नींबू का पानी या नारियल पानी या चाच या हर्बल पेय का भी सेवन आप कर सकते हैं।
1: जी हाँ मनीषा, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि मौसम बदलने पर खान पान में भी बदलाव जरूरी है, इसलिए हमें ताजा और घर का बना भोजन खाना है। हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, दालें और अंकुरित अनाज खाना है, मौसमी फल, दूध और दही, ये सारी चीजें मौसम के अनुसार संतुलित मात्रा में हम ले सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: यही अब बात करें मनीषा कि क्या नहीं खाना है, तो हमें बासी भोजन, बहुत ज्यादा तला भुना खाना, खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थ और बहुत ज्यादा ठंडे पेय पदार्थ नहीं खाने हैं।
0: जी,
1: स्वच्छ और पौष्टिक भोजन शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करता है, इसलिए हमें हमेशा हमारे भोजन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि स्वच्छता स्वास्थ्य का आधार है। बदलते मौसम में संक्रमण श्रोता साथियों तेजी से फैलता है, इसलिए व्यक्तिगत और आसपास की स्वच्छता का हमें विशेष ध्यान रखना है।
1: जी जी,
0: भोजन करने से पहले और शौचालय के उपयोग के बाद हाथों को अच्छी तरीके से धोना है। घर, रसोई, आसपास के वातावरण को साफ रखना है। साथ ही श्रोता साथियों, गंदगी और जमा पानी से मच्छर और कीट पैदा होते हैं, जिससे हम देखते हैं कि अंजलि जी रोग हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं। तो श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि हमें अपने घर के आसपास और खुद के घर की और अपनी भी सफाई हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल मनीषा, कई लोग केवल गर्मियों में ही पानी पीने पर ध्यान देते हैं, जबकि हर मौसम में शरीर को पानी की जरूरत होती है। पानी शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकालता है और शरीर को संतुलित रखता है।
0: जी,
1: दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, साफ और सुरक्षित पानी का उपयोग करें, बाहर जाने पर पानी की बोतल साथ रखें। कहना चाहेंगे कि स्वच्छता कई बीमारियों से बचाव का सबसे सरल उपाय है। भोजन से पहले और बाद में हाथ धोएं। शौचालय के उपयोग के बाद जैसा कि आपने बताया कि हाथ हमें अवश्य धोने हैं। इस तरीके से कुछ स्वास्थ्यवर्धक चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है। बरसात के मौसम में विशेष रूप से स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रमण तेजी से फैल सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे, लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि मनीषा, गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यहीं बात करें पर्याप्त नींद लेने की, तो हम देखते हैं कि व्यस्त जीवन शैली में लोग अक्सर नींद को नजरअंदाज कर देते हैं।
1: जी हाँ।
0: लेकिन अच्छी नींद शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद ले, समय पर सोने उठने की आदत बनाए, देर रात तक मोबाइल और टीवी देखने से बचें। पर्याप्त नींद लेने से शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इसी के साथ कहना चाहेंगे मनीषा कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कि व्यायाम केवल शरीर को फिट नहीं रखता बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है।
1: जी हाँ।
0: सुबह टहलें, योग करें, प्राणायाम करें, हल्की शारीरिक गतिविधियां नियमित रूप से करें। व्यायाम से शरीर सक्रिय रहता है और संक्रमण का खतरा कम होता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि बदलते मौसम में कहीं बीमारियां है वो तेजी से फैलने लगती हैं।
0: बिल्कुल।
1: इससे बचने के लिए श्रोता साथियों, हमें कुछ सावधानियां हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बाहर का अस्वच्छ भोजन हमें नहीं खाना है, दूषित पानी पीने से हमको बचना है। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर स्वच्छता का ध्यान रखना है हमें, किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें। साथ ही श्रोता साथियों, समय समय पर डॉक्टर की सलाह लें और उनकी दवाइयों का सेवन करें। समय पर उपचार और सावधानी से गंभीर बीमारियों से भी बचा जा सकता है। अंजलि जी।
0: जी हाँ मनीषा, जैसा कि हम कार्यक्रम में बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत कर रहे हैं, तो यही श्रोता साथियों को बताते हैं कि अक्सर लोग मौसम के बदलाव को गंभीरता से नहीं लेते। सुबह और शाम ठंड हो तो हल्के गर्म कपड़े पहने, बारिश में भीगने से बचें, भीग जाए तो तुरंत सूखे कपड़े पहन लें। बच्चों और बुजुर्गों का हमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। छोटी सी सावधानी बड़ी बीमारियों से बचा सकती है।
1: जी हाँ।
0: कहना चाहेंगे मनीषा श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से कि स्वास्थ्य केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी होता है। तनाव, चिंता और अवसाद भी शरीर को कमजोर बनाते हैं। परिवार के साथ समय बिताएं, सकारात्मक सोच रखें, योग और ध्यान करें और अपनी पसंद की गतिविधियों में समय दें। खुश मन स्वस्थ शरीर की पहचान है।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि बदलता मौसम प्रकृति का एक सामान्य चक्र है, लेकिन इसके दौरान स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी बढ़ती जाती हैं।
0: बिल्कुल।
1: यदि हम संतुलित आहार, पर्याप्त पानी, नियमित व्यायाम, स्वच्छता और पर्याप्त नींद साथ ही सकारात्मक जीवन शैली को अपनाएं तो अधिकांश मौसमी बीमारियों से बच सकते हैं। बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर स्वास्थ्य वाले लोगों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। स्वच्छता के प्रति सजग रहकर और छोटी छोटी सावधानियों को अपनाकर हम मौसम परिवर्तन के प्रभावों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। वास्तव में श्रोता साथियों, रोग से बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है।
0: हाँ।
1: इसीलिए बदलते मौसम में सतर्कता, स्वच्छता और संतुलित जीवन शैली को अपनाकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सुखी और ऊर्जावान जीवन जिए।
0: बिल्कुल मनीषा, कहना चाहेंगे साथियों से कि स्वस्थ जीवन का रहस्य महंगी दवाइयों में नहीं बल्कि हमारी दैनिक आदतों में छिपा है। संतुलित भोजन, स्वच्छता, पर्याप्त पानी, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद और सकारात्मक सोच, ये सभी मिलकर हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। जब हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हैं तब हम न केवल स्वयं को स्वस्थ रखते हैं बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं। इसलिए हमें आज ही से यह संकल्प लेना है कि मौसम चाहे कोई भी हो, हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, जागरूक रहेंगे और दूसरों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाएंगे।
1: जी हाँ।
0: क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज ही एक समृद्ध और खुशहाल राष्ट्र की नींव होते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो बातचीत रही है, जो गीत संगीत रहे हैं, वो आपको अवश्य पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा आपड़े, अपना भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
5: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: पता है जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
5: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कार्यक्रम समस्या समाधान हमरवा वरे अमर हित्ता भाई बुन ने आपनी बुन मनीषा ने आपनी बुन अंजलि नु राम राम। होवे भाइयों बोनो आप सब हमले रियो हो आपड़ू सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो ने विदेश मिलव 8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर रहा हमारे आज ने कार्यक्रम समस्या समाधान में।
1: होवे भाइयों बोनो लेने हाजिर थे गए हो कार्यक्रम समस्या समाधान ने लेने एक ना विषय ने हाथ मनीषा बोन आज कार्यक्रम में अपनी भाइयों बोनो की बातचीत नु विषय है वधती सड़क दुर्घटना ने एना समाधान हो थई शके। आपणे देखो हो के सड़के विकास नी पहचान है पण आ सड़के लापरवाही नियमनी अनदेखी ने कारण घणा आकानी दुर्घटनाओं ने जन्म आ लीधे है। आ एक घणी चिंता नो विषय है कि आजना टाइम में आपणे देखो हो के हर रोज घणा का जे मनक है ई सड़क दुर्घटना ना शिकार थई जाय है। इनमें घणा आकाना जे मनक है एना नी जान भी चली जाय है। तो एवं में आपणे ईज जाणंगा के हर ते मनकनी अणी वात ने समझवू होगा कि सड़क दुर्घटना एक गंभीर समस्या बनती जई रही है ने आना समाधान ना उपाय हो थई शके।
0: होवे अंजलि बोन तो आना विषय माते आपड़े भाई बोने कती कार्यक्रम में घणा काने वाते रहेगा अबर हमला गीत ने मोरे कर आपड़ी वाते।
1: होवे तो भाई बोनो आप हमर तरेजू आपड़ो रेडियो आपड़ी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी दोस्तों को आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हम सभी के जीवन का आधार है, हमारी पहचान है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है और वो है हमारा परिवार। श्रोता साथियों, परिवार केवल कुछ लोगों का एक साथ रहना नहीं बल्कि ये प्रेम, विश्वास, सहयोग, जिम्मेदारी, संस्कारों का वह सुंदर बंधन है कशिश, जो जीवन को दिशा देता है।
0: बिल्कुल,
1: आज के दौर में जब जीवन की रफ्तार तेज हो गई है तब परिवार का महत्व और भी बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल,
1: आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि परिवार क्या है और इसका महत्व हमारे जीवन में क्यों जरूरी है।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो बातें ढेर सारी होंगी लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना श्रोता साथियों को पहले यहाँ कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं हमारे जीवन में परिवार के महत्व को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, आपसे कहना चाहेंगे कि जब हम इस दुनिया में आते हैं अंजलि जी, तब सबसे पहले जिस दुनिया से हमारा परिचय होता है वह हमारा परिवार ही होता है। परिवार हमें केवल जन्म नहीं देता बल्कि हमें जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाता है। साथियों,
1: जी जी,
0: देखते हैं कि परिवार हमें बोलना, चलना, व्यवहार करना, प्यार करना और साथ ही साथ दूसरों का सम्मान करना भी सिखाते हैं अंजलि जी। श्रोता साथियों, आज के दौर में जब जीवन की रफ्तार बहुत तेज हो गई है हम सभी की और लोग अपने काम पर और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए हैं अंजलि जी कि कई बार परिवार के लिए समय निकालना उनके लिए मुश्किल हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन सच तो ये है श्रोता साथियों कि चाहे जीवन कितना भी क्यों न बदल जाए, परिवार का महत्व कभी कम नहीं हो सकता।
1: बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि परिवार समाज की सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। एक बच्चा सबसे पहले परिवार में ही बोलना, चलना, सीखना और समझना शुरू करता है।
0: बिल्कुल।
1: माता पिता, दादा दादी, भाई बहन और अन्य सदस्य मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है।
0: बिल्कुल।
1: परिवार हमें केवल रहने की जगह नहीं देता बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। यही वह स्थान है श्रोता साथियों जहां हमें बिना किसी शर्त के अपनापन और सुरक्षा मिलती है।
0: बिल्कुल।
1: जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हम परेशान, दुखी और निराशा महसूस करते हैं। ऐसे समय में कशिश, परिवार ही हमारा सबसे बड़ा सहारा बनता है।
0: जी जी।
1: जब दुनिया हमारी बात नहीं समझती तब परिवार हमें समझता है। जब हम असफल होते हैं तब परिवार हमें फिर से उठने की प्रेरणा देता है।
0: बिल्कुल।
1: परिवार के सदस्यों का प्यार और समर्थन व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। आज मानसिक स्वास्थ्य, अकेलापन और अवसाद जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
0: जी
1: ऐसे
0: हाँ।
1: समय में मजबूत पारिवारिक रिश्ते व्यक्ति को इस कठिनाई से बाहर निकलने में मदद करते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। और हम देखते हैं कि परिवार केवल एक घर में रहने वाले लोगों का समूह नहीं होता बल्कि परिवार भावनाओं का एक संगम है। विश्वास का नाम है और प्रेम और अपनत्व का दूसरा नाम है। साथियों, परिवार में माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी और अन्य सदस्य मिलकर शामिल होते हैं। ये सभी मिलकर हमारे जीवन को संवारने का कार्य करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि परिवार वह जगह है, वह रिश्ता है जहां बिना किसी शर्त के हमें स्वीकार किया जाता है। साथियों, दुनिया चाहे जो भी कुछ कहे लेकिन परिवार के सदस्य हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं अंजलि जी।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि हम देखते हैं कि परिवार को बच्चों की पहली पाठशाला कहा जाता है। बच्चे अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों को देखकर ही व्यवहार सीखते हैं।
0: बिल्कुल।
1: सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत, अनुशासन, सम्मान और सहयोग जैसे गुण परिवार से ही प्राप्त होते हैं। यदि परिवार में अच्छे संस्कार दिए जाएं तो बच्चे जिम्मेदार नागरिक बनते हैं।
0: बिल्कुल।
1: किताबें ज्ञान दे सकती हैं लेकिन जीवन के मूल्य परिवार ही सिखाता है।
0: जी जी,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कशिश कार्यक्रम के माध्यम से कि परिवार में बुजुर्ग अनुभव और ज्ञान का खजाना होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: उन्होंने जीवन के अनेक उतार चढ़ाव देखे होते हैं। उनके अनुभव परिवार को सही दिशा देने में मदद करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: दादा दादी और नाना नानी बच्चों को कहानियां, परंपराओं और जीवन के अनुभवों के माध्यम से बहुत कुछ सिखाते हैं।
0: जी हाँ।
1: उनके साथ समय बिताने से बच्चों में संवेदनशीलता और सम्मान की भावना विकसित होती है।
0: बिल्कुल।
1: बुजुर्ग परिवारों की जड़ों की तरह होते हैं और जड़ें मजबूत हो तो पेड़ भी मजबूत रहता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, साथ ही हम देखते हैं कि परिवार को जीवन की पाठशाला इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि परिवार हमें सिखाते हैं कि हमें लोगों के साथ बात कैसे करनी है।
1: बिल्कुल।
0: उनका सम्मान कैसे करना है, कैसे व्यवहार करना होता है, दूसरों की मदद कैसे करनी होती है, साथ ही सही और गलत में क्या अंतर है, यह भी हमें परिवार के द्वारा ही बताया जाता है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, यदि परिवार अच्छे संस्कार देते हैं तो बच्चा जीवन में आगे बढ़कर एक अच्छा नागरिक बनता है। हम कह सकते हैं कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तब वह कुछ नहीं जानता है। ऐसे में श्रोता साथी, उससे बोलना, व्यवहार करना, अच्छे बुरे के अंतर समझना सब कुछ परिवार से ही सीखने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि परिवार मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण की पहली और सबसे बड़ी संस्था होती है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से परिवार के महत्व को लेकर ढेर सारी बातें चल रही है। ये बातें निरंतर आगे यूं ही बनी रहेंगी लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि कशिश गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि परिवार का क्या महत्व है और उसमें बुजुर्गों की क्या भूमिका है। यही बात करें परिवार और बच्चों के विकास की, तो श्रोता साथियों, बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव परिवार में ही रखी जाती है।
1: बिल्कुल,
0: परिवार का वातावरण सकारात्मक हो तो बच्चों में कशिश आत्मविश्वास बढ़ता है, वे अपनी बात खुलकर कह पाते हैं और नई चीजें सीखने को प्रेरित रहते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: यदि परिवार में लगातार झगड़े, तनाव और संवाद की कमी हो तो बच्चों के मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए बच्चों के सामने श्रोता साथियों, प्रेम, सम्मान और सहयोग का वातावरण बनाए रखना आवश्यक है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि एक अच्छा परिवार समाज को अच्छे नागरिक देता है। जो व्यक्ति परिवार में सहयोग, सम्मान और जिम्मेदारी सीखता है कशिश, वही समाज में इन मूल्यों का पालन करता है।
1: बिल्कुल।
0: और इस प्रकार मजबूत परिवार एक मजबूत समाज की नींव रखता है।
1: जी हाँ,
0: परिवारों में आपसी प्रेम और समझ बनी रहे तो समाज में शांति, सद्भाव और सहयोग की भावना बढ़ती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। वहीं अगर बात करें भावनात्मक सुरक्षा के बड़े आधार की, तो दोस्तों जीवन में ऐसे कई पल आते हैं जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं या असफल हो जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे समय में यदि कोई सबसे पहले हमारा साथ देता है तो वह हमारा परिवार ही होता है अंजलि जी। जब पूरी दुनिया हमें हमारे खिलाफ दिखाई देती है तब परिवार हमें वहाँ पर संभालता है साथियों।
0: जी जी।
1: परिवार हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अकेले नहीं हैं। और यही भावनात्मक सुरक्षा इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है अंजलि जी।
0: बिल्कुल कशिश, आज के समय में परिवार कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। मोबाइल और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग, व्यस्त जीवन शैली, बढ़ता तनाव और संवाद की कमी और परिवारों के बीच दूरियां बढ़ा रहा है। एक ऐसे कह सकते हैं कि एक ही घर में रहने के बावजूद कई बार लोग एक दूसरे से खुलकर बात भी नहीं करते। इससे रिश्तों में गलतफहमी पैदा हो जाती है।
1: बिल्कुल।
0: और परिवार को मजबूत बनाए रखने के लिए कुछ नियमित संवाद जरूरी होता है। जैसे कि हम कुछ समय निकाल सकते हैं, जब हम सुबह नाश्ता कर रहे होते हैं तब हम परिवार के साथ बैठ जाएं, दोपहर में जब हम खाना खा रहे होते हैं तब परिवार से थोड़ी बातचीत कर लें, रात के समय सभी लोग फ्री रहते हैं तब हमें एक साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। इस तरीके से हम देखते हैं कि उस समय संवाद का जो माहौल रहेगा उसमें सभी को एक दूसरे की बातों को सुनना है, महत्व देना है, पूरे दिन की दिनचर्या को जानना है। जब कशिश परिवार के साथ हमारा संवाद बना रहता है तो एक दूसरे से भावनात्मक जो रिश्ते हैं वो जुड़ने लगते हैं। और जब भावनात्मक रिश्ते हमारे अपने परिवार वाले सदस्यों से बनते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी कई समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीवन की असली खुशियां परिवार के साथ बिताए गए समय में ही छिपी हुई है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, त्योहारों की रौनक हो, जन्मदिन की खुशियां हो, शादी ब्याह के उत्सव हो या फिर छोटी छोटी पारिवारिक बैठकों का आनंद, ये सभी चीजें परिवार के बिना अधूरी है। एक साथ बैठकर भोजन करना, बातचीत करना, हंसना खेलना और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाना श्रोता साथियों, ये सभी एक ही बातें हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अंजलि जी कि परिवार और खुशियों का गहरा संबंध है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। इसी के साथ अब बात करें कि परिवार को मजबूत बनाने के क्या उपाय हैं जो हमें अपनाने चाहिए। तो श्रोता साथियों, प्रतिदिन कुछ समय परिवार के साथ हमें बिताना है।
1: बिल्कुल।
0: एक दूसरे की बात ध्यान से सुननी है, बुजुर्गों का सम्मान करना है, बच्चों के साथ संवाद बनाए रखना है और छोटी छोटी खुशियों को हमें मिलकर बनाना है।
1: जी हाँ,
0: मतभेद होने पर बातचीत से समाधान निकालने हैं, मोबाइल से ज्यादा परिवार को समय देना है। इसी के साथ श्रोता साथियों, एक दूसरे की जरूरतों और भावनाओं का सम्मान करना है। जब हम इस तरीके से कुछ उपाय अपनाते हैं तो परिवार की चीजें मजबूत बनती है। क्योंकि परिवार हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम देखते हैं कि परिवार में अगर सदस्यों के बीच अनबन हो जाती है तो उससे पूरा जो प्रभाव है वो परिवार के अन्य सदस्यों पर पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि अगर जरा सा भी मन मुटाव हो तो हम तुरंत संवाद करें। संवाद से बहुत सारी चीजों का समाधान निकल पाता है।
1: जी हाँ अंजलि जी। साथियों, जीवन हमेशा एक सा नहीं होता, ये बात तो हम सभी जानते हैं। कभी हमारे जीवन में आर्थिक संकट आते हैं तो कभी बीमारी आती है।
0: बिल्कुल।
1: तो कभी हमें असफलता मिलती है। ऐसे समय में परिवार हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं।
0: जी जी।
1: परिवार के सदस्य एक दूसरे का सहयोग जब करते हैं अंजलि जी, तो समस्याओं का समाधान अपने आप ही निकल जाता है और मुश्किल परिस्थितियां भी कह सकते हैं कि हल हो जाती है।
0: जी जी।
1: इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि बच्चों के विकास में भी परिवार की भूमिका अहम होती है। जैसा कि अंजलि जी आपने बताया था कि बच्चों का भविष्य काफी हद तक परिवार के वातावरण पर ही निर्भर करता है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: यदि परिवार में प्रेम, अनुशासन और सकारात्मक माहौल होगा तो इससे बच्चे का विकास भी अच्छे से होगा और बच्चे ईमानदार, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं है बल्कि विश्वास, अपनापन, त्याग और जिम्मेदारी का वह सुंदर संगम है जो जीवन को अर्थ देता है।
1: बिल्कुल।
0: जीवन में धन, पद और सफलता महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन यदि परिवार का साथ न हो तो ये उपलब्धियाँ अधूरी लगती है।
1: जी हाँ।
0: एक मजबूत परिवार व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में संभालता है, सफलता में संतुलित रखता है और असफलता में आगे बढ़ने का साहस देता है।
1: बिल्कुल।
0: परिवार वो स्थान है श्रोता साथियों जहाँ हमारी खुशियाँ जो हैं वो कई गुना बढ़ जाती हैं और दुख आधे रह जाते हैं। इसलिए हम अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताएं, रिश्तों को मजबूत बनाने और प्रेम, सम्मान और सहयोग की संस्कृति को आगे बढ़ने का संकल्प लें।
1: बिल्कुल।
0: जब परिवार मजबूत होगा तभी समाज मजबूत होगा और समाज मजबूत होगा तो देश भी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम सभी को परिवार के जो मूल्य हैं, जो संस्कृति है, जो रीत है, उसको अपनाना चाहिए और बड़े बुजुर्गों के अनुभवों के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि जब हम हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के साथ अपने जीवन को यापन करते हैं कशिश, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, उसका समाधान हम निकाल पाते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी जरूर करेंगे।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि परिवार का क्या महत्व है, कशिश कार्यक्रम के माध्यम से एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को बताना चाहेंगे कि परिवार की असली ताकत क्या है। श्रोता साथियों, एक छोटे से गांव में रामप्रसाद नाम का किसान रहता था। उसके परिवार में पत्नी सीता, दो बेटे मोहन और सोहन और एक बेटी राधा और उसके बुजुर्ग माता पिता रहते थे।
1: बिल्कुल,
0: परिवार जो था वो बड़ा था, लेकिन कभी यह परिवार पूरे गांव के लिए मिसाल माना जाता था। सभी सदस्य मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे और हर काम साथ मिलकर करते थे।
1: बिल्कुल।
0: समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए, मोहन और सोहन की शादी हो गई। अब परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ गई, लेकिन धीरे धीरे परिवार में छोटी छोटी बातों पर मन मुटाव होने लगा।
1: बिल्कुल।
0: कभी खेत के काम को लेकर बहस होती तो कभी खर्चों को लेकर विवाद हो जाता। घर में पहले जैसी हंसी और अपनापन कम होने लगा था।
1: बिल्कुल।
0: दादाजी अक्सर सबको समझाती कि बेटा, परिवार की ताकत एकता में होती है, यदि हम बिखर गए तो हमारी खुशियां भी बिखर जाएंगी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन युवा पीढ़ी को उनकी बातें पुरानी लगती थी। एक दिन झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि मोहन और सोहन ने अलग अलग रहने का निर्णय ले लिया। रामप्रसाद बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद समय उन्हें सबक सिखाएगा। कुछ महीनों बाद दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। पहले जो काम मिलकर हो जाता थे, अब उनमें कठिनाई आने लगी थी। मोहन के खेत में फसल खराब हो गई, उसे मजदूरों पर अधिक पैसा खर्च करना पड़ा।
1: बिल्कुल।
0: दूसरी ओर सोहन की तबीयत खराब रहने लगी और उसके काम प्रभावित होने लगे। उधर घर में दादी की तबीयत भी बिगड़ गई। पहले पूरे परिवार के लोग उनकी देखभाल करते थे, लेकिन अब जिम्मेदारियां बढ़ गई और कोई भी पूरी तरह समय नहीं दे पा रहा था।
1: जी हाँ।
0: एक दिन गाँव में अचानक तेज बारिश आई और आंधी आ गई। मोहन के खेत की मेड़ टूट गई, पानी तेजी से खेत में भरने लगा। वह अकेला था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
1: बिल्कुल।
0: तभी सोहन को खबर मिली। बिना देर किए वो अपने परिवार के साथ मदद के लिए पहुंचा। दोनों भाइयों ने पूरी रात मेहनत करके खेत को बचाया। अगले दिन जब वे थके हुए घर लौटे तो दादाजी ने दोनों को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, कल तुमने देखा कि संकट के समय कौन काम आया? धन, जमीन और अहंकार नहीं, बल्कि अपना परिवार। दोनों भाई चुप हो गए, उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। कुछ दिनों बाद दादी की तबीयत और खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें परिवार के साथ और खुशी भरा माहौल चाहिए। यह सुनकर सभी परिजन एक साथ बैठे। वर्षों बाद सबने खुलकर बातें की, पुराने गिले शिकवे दूर किए, एक दूसरे से माफी मांगी। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हमने घर तो बांट लिया, लेकिन रिश्तों की कीमत समझ नहीं पाए।
1: बिल्कुल।
0: सोहन ने भी सिर झुकाकर कहा, सच है भैया, अलग होकर हमने केवल परेशानियां ही पाई हैं। दादाजी मुस्कुराए और बोले, परिवार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ निभाना होता है।
1: बिल्कुल।
0: उस दिन पूरे परिवार ने फिर से मिलकर रहने का फैसला किया। घर में फिर से रौनक लौट आई। कशिश, बच्चे दादा दादी के साथ समय बिताने लगे। महिलाएं मिलकर काम करने लगी, खेतों का काम भी पहले से बेहतर होने लगा। कुछ वर्षों बाद रामप्रसाद का परिवार गांव के सबसे खुशहाल परिवारों में गिना जाने लगा।
1: जी हाँ।
0: लोग अक्सर उनसे पूछते कि उनकी खुशहाली का राज क्या है। रामप्रसाद मुस्कुराकर कहता, हमारी खुशहाली का राज हमारी एकता है। परिवार जितना जुड़ा रहेगा, जीवन उतना ही मजबूत और सुखी रहता है। परिवार जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। धन, संपत्ति और सफलता समय के साथ बदल सकती है, लेकिन परिवार का प्यार, सहयोग और साथ जीवन भर हमारी ताकत बनकर रहता है।
1: बिल्कुल।
0: परिवार में प्रेम, सम्मान और एकता बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी होती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। साथियों, हम देखते हैं कि आज तकनीक ने हमारे जीवन को काफी हद तक आसान बनाया है, लेकिन कई बार अंजलि जी यही तकनीक रिश्तों में दूरी भी पैदा कर रही है। हम देखते हैं कि घर में सभी लोग एक साथ होते हैं, लेकिन साथ में बातचीत कम होती है।
0: बिल्कुल।
1: और मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ऐसे में हम सभी को यह समझना होगा श्रोता साथियों कि तकनीक जरूरी है, लेकिन रिश्तों की कीमत पर नहीं। परिवार के साथ समय बिताना, बातचीत करना और एक दूसरे की बात सुनना भी उतना ही जरूरी होता है। देखते हैं अंजलि जी कि परिवार के बुजुर्ग जो होते हैं वो अनुभव और ज्ञान का भंडार होते हैं।
0: जी जी।
1: उनके जीवन और अनुभव युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। साथियों, दादा दादी और नाना नानी बच्चों को कहानियाँ, संस्कारों और जीवन के महत्वपूर्ण पाठों से परिचित कराते हैं।
0: जी जी।
1: इसलिए बुजुर्गों का सम्मान करना और उनकी देखभाल करना प्रत्येक परिवार का कर्तव्य है। अंजलि जी,
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि परिवार केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं बल्कि जीवन को स्थिरता, सुरक्षा और अर्थ देने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। बदलते समय, आधुनिक जीवन शैली और बढ़ती व्यवस्थाओं के बीच भी परिवार का महत्व जो है वो कम नहीं हुआ है, बल्कि पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। आज जब लोग अकेलापन, तनाव और रिश्तों में बढ़ती दूरियों का सामना कर रहे हैं, तब परिवार ही वो स्थान है श्रोता साथियों, जहां व्यक्ति को अपनापन, भरोसा और मानसिक शांति मिलती है।
1: जी।
0: एक मजबूत परिवार व्यक्ति को केवल वर्तमान में सहारा नहीं देता बल्कि उनके भविष्य को भी मजबूत बनाता है।
1: बिल्कुल।
0: परिवार बच्चों को संस्कार देता है, युवाओं को जिम्मेदारी का बोध कराता है और बुजुर्गों को सम्मान व सुरक्षा प्रदान करता है। परिवार के भीतर होने वाला प्रेम, त्याग और सहयोग आपसी समझ समाज में और भी सकारात्मक बदलाव लाने का आधार बनते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए यदि हम एक बेहतर समाज और बेहतर भविष्य की कल्पना करते हैं तो उसकी शुरुआत परिवार को मजबूत बनाने से ही होगी।
1: जी हाँ अंजलि जी, साथी श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि परिवार में महिलाओं की भूमिका भी अहम होती है। जैसे कि परिवार के विकास और सुदृढ़ीकरण में महिलाओं की भूमिका अहम मानी जाती है। अंजलि जी,
0: बिल्कुल,
1: माता जो है वो परिवार की पहली शिक्षिका होती है और बच्चों को प्रेम, अनुशासन, संस्कार और जीवन के मूलभूत मूल्य सिखाती है।
0: बिल्कुल।
1: साथियों, आज जो महिलाएं हैं वे हर घर और कार्य क्षेत्र दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान दे रही हैं। इसलिए परिवार में महिलाओं का सम्मान और समान अवसर सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल।
1: कह सकते हैं अंजलि जी कि एक अच्छा परिवार एक अच्छे नागरिक को तैयार करता है और एक अच्छे नागरिक एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। यदि परिवारों में नैतिकता, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित हो जाए तो देश का विकास भी तेजी से होने लगेगा। इसलिए परिवार को राष्ट्र निर्माण की पहली पाठशाला भी कहा जा सकता है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हम बहुत अच्छे तरीके से ये जान पा रहे हैं कि परिवार को मजबूत बनाए रखना हमारे लिए क्यों जरूरी है और उसके क्या क्या फायदे होते हैं और हम कई परेशानियों से बच सकते हैं। ये बातें निरंतर आगे और यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी मन कर रहा है एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: ऊपर भवन टिकता है, ठीक उसी प्रकार मजबूत परिवार से भी एक स्वस्थ और सशक्त समाज का निर्माण होता है। परिवार व्यक्ति को सामाजिक नियमों और मूल्यों का ज्ञान देता है। परिवार में रहकर व्यक्ति अनुशासन, सहयोग, सहनशीलता और जिम्मेदारी जैसे गुण भी सीखता है।
1: बिल्कुल,
0: हम कहें तो यदि परिवार में अच्छे संस्कार दिए जाए तो वह व्यक्ति समाज का एक आदर्श नागरिक भी बन सकता है।
1: बिल्कुल,
0: साथियों समाज में शांति, एकता और सद्भाव बनाए रखने में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और परिवार ही हमें सिखाते हैं कि दूसरों का सम्मान हमें कैसे करना है, जरूरतमंदों की सहायता कैसे करनी है और समाज के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है।
1: बिल्कुल कशिश, हमें यह समझना होगा कि परिवार की मजबूती बड़े बड़े साधनों से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों से बनती है।
0: बिल्कुल,
1: एक दूसरे की बात सुनने से, साथ बैठकर साथ बिताने समय बिताने से, सम्मान देने से, मुश्किल समय में एक दूसरे का हाथ थामने से, श्रोता साथियों रिश्तों के गर्माहट में बनाए रखना किसी भी भौतिक उपलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि जीवन की असली खुशियां संबंधों में ही बसती है। हम यह संकल्प ले सकते हैं कशिश कि अपने परिवार को केवल रहने की जगह नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास, संवाद और सहयोग का ऐसा घर बनाएंगे जहां हर सदस्य स्वयं को महत्वपूर्ण और सम्मानित महसूस करे। क्योंकि परिवार जितना सशक्त होगा व्यक्ति उतना ही आत्मविश्वासी होगा, समाज उतना संवेदनशील होगा, उतना ही राष्ट्र समृद्ध और खुशहाल बनेगा। यही एक सुखी, संतुलित और मानवीय जीवन की सबसे मजबूत नींव है। इसलिए कहा जा सकता है श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि परिवार हमारे जीवन का वह आधार है जो हर परिस्थिति में हमें संभालने की क्षमता रखता है। जीवन की यात्रा में कई लोग मिलते हैं, कई रिश्ते बनते हैं, लेकिन परिवार वह रिश्ता है जो हमारी खुशियों में मुस्कुराता है और कठिन समय में बिना किसी स्वार्थ के हमारे साथ खड़ा रहता है। यही परिवार है जो हमारे व्यक्तित्व की ताकत को और ज्यादा बढ़ा देता है और हमें सुरक्षित आश्रय भी प्रदान करता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, साथियों हमारे जीवन में धन, दौलत, पद और प्रतिष्ठा जीवन में बाद में आते हैं, लेकिन परिवार वह अनमोल धरोहर है जो हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ी रहती है। परिवार का सम्मान करें श्रोता साथियों, बुजुर्गों का आदर करें और बच्चों को अच्छे संस्कार दें, साथ ही रिश्तों की मिठास बनाकर रखें, क्योंकि मजबूत परिवार ही खुशहाल समाज और विकसित राष्ट्र की पहचान होते हैं। दोस्तों याद रखें, परिवार वह वृक्ष है जिसकी जड़ें प्रेम में, तना विश्वास में और शाखाएं संस्कारों में विकसित होती हैं।
1: बिल्कुल,
0: जहां परिवार में प्रेम, सम्मान और सहयोग होता है अंजलि जी, वहां सुख, शांति और समृद्धि स्वयं निवास करती है।
1: जी हाँ कशिश, आज तकनीक ने दूरियों को कम तो किया है लेकिन दिलों के बीच की दूरी बढ़ाने का खतरा भी पैदा किया है। ऐसे समय में परिवार के सदस्यों के बीच संवाद, संवेदनशीलता और आपसी जुड़ाव बनाए रखना पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। परिवार तब मजबूत बनता है जब उसके सदस्य केवल अधिकारों की नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों की भी जिम्मेदारी समझते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जब घर के लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं तो घर केवल ईंट पत्थरों की इमारत नहीं रहता बल्कि स्नेह और विश्वास का आशियाना बन जाता है।
0: जी हाँ,
1: परिवार हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल अपनी सफलता तक सीमित नहीं है बल्कि दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। परिवार के भीतर सीखे गए मूल्य हमें अच्छा इंसान, जिम्मेदार नागरिक और संवेदनशील समाज का हिस्सा बनाते हैं। इसलिए परिवार की मजबूती केवल व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं है कशिश, बल्कि सामाजिक विकास की भी अनिवार्य शर्त है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं और अब हम जैसा कि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले हमारे श्रोता साथियों को हमारे कार्यक्रम का पता हम बता देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ताकि हमें पता चल सके कि दोस्तों को हमारा कार्यक्रम कैसा लगा।
1: जी हाँ श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3201 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर को।
1: नमस्कार
0: साथी, दोस्तों आपको छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
2: प्रिया, हो,
3: हो,

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपना वंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकर रेडियो 90.8 FM और आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। हमारे इस नंबर पर हमारा फ़ोन नंबर ही 9460051234। तो साथियों अब हम हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडितपुर सिटी से। फिल्म का नाम है वंश, गीत के बोल हैं आके तेरी बाहों में। इस गीत की फरमाइश करता है प्रशांत सिंधी, सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा जी घोड़ की। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुना चारे दादरी गेट भवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुनाल जी मेहरा। इसी बीच जुन्नाचार्य भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिपा, कपिल चिपा, पूजा चिपा, ईशान चिपा जी। और भी साथी हमारे साथ जुन्नाचार्य सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, नितिन कुमार वर्मा, सोनम वर्मा। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं आके तेरी बाहों में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाकर रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मजनू का टीला सी। फिल्म का नाम है इज्जत। गीत के बोल हैं, क्या मिलिए ऐसे लोगों से। इस गीत की फरमाइश करता है कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सताना एमपी से जुड़ रही उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माहीजी मलिक और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रही हैं। अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण, योगिता, प्रणाली जी, पार्थक जी और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। भागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनीष देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नितन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी जी और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी जी भाटिया। गाजियाबाद से जुड़ना चाह रहे शिषपाल जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बेबू अहमद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और साधिया जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, दुर्गा प्रसाद, पराग और तनुजा, ईशान जी। आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, क्या मिलिए ऐसे लोगों से। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी जी ने। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाकट रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों अभी हमने मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत की बोल थी क्या मिलिए ऐसे लोगों से। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुके हैं नेपानगर मध्य प्रदेश से। फिल्म का नाम है कुदरत। गीत के बोल हैं तूने वो रंगीले कैसा जादू किया। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है सुदर्शन चरण शाह, पल्लवी शाह, प्रकर्ष शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। भागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी जी इस गीत के अनुरोध करता है। रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, श्रीमती रंजू भाई, युवराज सिंह, शिवांगी जी और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, मुरली प्रसाद वर्मा, मुरली नीरा वर्मा इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं। बोरखेड़ा पित्रामल से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयू मुणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कोश जी मुणत और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रही है। मुरादाबाद से अजित कसाना, माया देवी, ऋतिक आदित्य जी कसाना। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं तूने वो रंगीले के साथ जादू किया। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है रामपुर से। फिल्म का नाम है अचानक, गीत की बोल ही ऊंची ऊंची दीवारों में। इस गीत की फरमाइश करते हैं अमरजीत, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश जी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं कोखा भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मूरज जी जंगेल, अनिल कुमार जंगेल, अजीत कुमार, आरुषि जंगेल, नंदिनी जंगेल। सुकरी कला से जुड़ना चाह रहे हैं अमित जंगेल, सुकुन जंगेल, आरुषि ओशिका, अदिति जी जंगेल और अंजलि जी जंगेल। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं पंडेपुर सिटी से जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुभान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज मुलानी, चाचा चाची जी और मुलानी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इस गीत के अनुरोध करता है मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भगवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन मास्टर समरराज आर्यन वर्मा, बीबी आरोही वर्मा, ऐशिका वर्मा, श्वेता जी वर्मा, अंजलि जी वर्मा। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही ऊंची ऊंची दीवारों में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भागवत सी। फिल्म का नाम है आप तो ऐसे ना थे, गीत की बोल है तो इस तरह से मेरी जिंदगी में। इस गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रही हैं दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिसा नायाब जी और लड्डू जी। सलार पहलगाम से जुड़ना चाह रही हैं पीरजादा मिराजुद्दीन, नजनुद्दीन, केसरुद्दीन जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ शाहू, पंकज शाहू, तिरुपति जी शाहू। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ रही हैं गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आरुषि श्रीवास, विवेक श्रीवास, बीबी आरुषि श्रीवास। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमो और मानस जी राज। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मी मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से जुड़ रही हैं पीयूष सिक्का, कुनिका सिक्का, डुग्गू जी सिक्का और भाविका जी सिक्का। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं तो इस तरह मेरी जिंदगी में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

दोस्तों अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत की बोल थी तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कलानूर सिंह। फिल्म का नाम है आशा, गीत के बोल।

शीशा हो या दिल टूट जाता है। इस गीत की फरमाइश करता है नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं नेहरू चौक पेठन से डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता यादव, आरती पूजा, प्रशांत यादव, सोनम यादव, बेबी सिया यादव। जलाना शहर से जुड़ना चाह रहे हैं सोमनाथ यादव, गीता यादव, ओम यादव, सुभाष यादव, चंदन यादव, एकता जी यादव और संगीता जी यादव। इसे भी जुड़ना चाह रहे भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारेश मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोकीलाल जी वर्मा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी और हिमांश जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं पटेल नगर मालोट से डॉक्टर रमेश कुमार झाजोरिया, गीता रानी झाजोरिया, गंदीप झाजोरिया, अर्जुन झाजोरिया और गुड्डू जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही शीशा हो या दिल टूट जाता है। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाघ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजुटवारा सी। फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी, गीत के बोल हैं ओ मेरे दिल के चैन। इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान जी अंसारी और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। नरवेल महाराष्ट्र से पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर, मलकापुर से जुड़ रहे हैं नारायण इगले, सोपान तावड़ी और आशीष महेकर जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राज यादव, प्रशांत राज यादव, सचिन वायाल, प्रथमेश देशमुख, सर्वत देशमुख, प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी कल्पना जी देशमुख। इसी बीच जुड़ना चाह रहे डेपकी रोड अकुला से शशिला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव जी मधुरकर। सहारनपुर से जुड़ना चाह रहे जोन डिकिस्ट्रो, रोजे डिकिस्ट्रो, पल डिकिस्ट्रो, विलेज डिकिस्ट्रो। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं ओ मेरे दिल के चैन। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों अभी हमने किशोर कुमार जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत की बोल थे ओ मेरे दिल के चैन। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दिल्ली से। फिल्म का नाम है बेताब। गीत की बोल है जब हम जवां होंगे। इस गीत की फरमाइश करता है तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चेतनी मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ना चाह रहे राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव खुराना, रिधानजी खुराना। इसी बीच जुड़ना चाह रही कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक जी। और भी श्रोता साथी हमारे बीच जुड़ना चाह रहे हैं खड़वा से राजेश सांबले सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन, अक्षयजी सेन। इसी बीच जुड़ना चाह रही हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिलगानी, बबीता मिलगानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। इस गीत के अनुरोध करता है नवाशहर पंजाब से गंगदीप थांदी, तिप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबीवामिका वानी जी थांदी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। गीत के बोल ही जब हम जवान होंगे। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

नमस्कार श्रोता साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश प्रातः 11 से दोपहर 1 बजे तक चलता है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने फरमाइश गीतों को सुन सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में। हमारे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए, 9460051234। इस नंबर के जरिए आप हमें व्हाट्सएप SMS करके आप अपने फरमाइश गीतों को सुन सकते हैं प्रातः 11 से 1 बजे के बीच में वागर रेडियो 90.8 FM पर। तो दोस्तों, जैसा कि इससे पहले हमारे रेडियो साथी मनीषा आपके साथ जुड़ी हुई थी और 12 बज चुके हैं, फरमाइशों का सिलसिला चल ही रहा था। अगली फरमाइश आई है हमारे पास, गीत के बोल है, गुलों के रंग से सितारों की रोशनी दे दूं। फिल्म का नाम है सलाम मोहब्बत। सुनना चाह रहे इस गीत को कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकृत, गुरशब्द सिंह राहुल अनुरोध करता है इस गीत के। किशोर नगर अमरावती से हीरामन शेंटे, शिला देवी शेंटे, सिद्धार्थ कुराने, सप्तरंग श्रोता परिवार, कुंभार गले श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले, सानिका दले, पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा सोनवने, कोल सिटी भरकाना से है अफजल दास, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, कमल कुमार और मोहम्मद अफजल मलिक। तो आइए दोस्तों सुन लेते हैं इस गीत को। गीत के बोल है, गुलों के रंग से तारों की रोशनी।

साथियों अगली फरमाइश हमारे पास आई है, गीत के बोल हैं, झिल मिल सितारों का आंगन होगा, फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु। सुना जा रहे इस गीत को पंकजार्य, प्रियंका, बीटी वाड़ोदे, ये है पुणे से। अनुरोध करता है इस गीत के मोहम्मद सईद अब्बासी, निकट परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अवान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सारे सदस्य। ये है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुनटी बुलंदशहर से हैं, अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, कव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा से पाठक और विनोद पुरी, और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। श्रोताओं सुना जा रहा है इस गीत को उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से हैं ये। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को, गीत के बोल हैं, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। आवाज दी इस गीत को मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर जी ने।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमारे पास आई है। गीत के बोल है, इतना ना मुझे तू प्यार बढ़ा। सुना जा रहे इस गीत को धनुरी तेलीवारा से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बीबी आलिया, अयान बाबू। अनुरोध करता है इस गीत के फाजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा, ट्वांशी खेड़ा। अनुरोध किया है इस गीत के लिए दिल्ली बिहारी कॉलोनी से बीना मस्किन, तुलसी मस्किन, आशीष रंजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना। बेरशहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर खट्टे, संगीता खट्टे, साक्षी खट्टे, जयश्री महतरे, अंजलि करवा, बाबा बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टूल, पीपी कुल थे। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां, आजाद नगर अक्सर, हरिद्वार से हैं ये। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं इस गीत को। गीत के बोल हैं, इतना ना मुझे तू प्यार बढ़ा।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमारे पास आई है, गीत की बोल है, तू बन जा गली बनारस की। फिल्म का नाम है शादी में जरूर आना। सुनना चाह रहे इस गीत को बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरित रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोना मतीपा, डॉक्टर दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से हैं श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, ग्राम महेशवाड़ी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, अखिल वाल्मीकि धाड़े, नाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, गांव कुम्हारहेड़ा सरहानपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा नाजिया, आफियास, इब्राहिम सद्दाम, अदीब और भी दोस्त हैं। दोस्तों जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, पराशवल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलबीर सिंहा, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से हैं ये। तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को, गीत के बोल हैं, तू बन जा गली बनारस की।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमारे पास आई है गीत की बोल ही ओढ़नी ओढ़ के नाचो, फिल्म का नाम है तेरे नाम। सुनना चाह रहे इस गीत को मित्र नगर पिरशहर महाराष्ट्र से विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े, वैभव शिंदे, हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे, प्रिया सरोदे अनुरोध करता है दोस्तों इस गीत के। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश ककनीजा, पूनम ककनीजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमिता आहूजा पसंद किया है इस गीत को। भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चना ताई गुड़ाने, हिरामन शेंडे जी, प्रेम प्रसिद्धि, प्रतिभा गुड़ाने। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, गीत की बोल ही ओढ़नी ओढ़ के नाचो।

दोस्तों, अभी हमने सुना, फिल्म का नाम था तेरे नाम, गीत की बोल थी ओढ़नी ओढ़ के नाचो। अगली फरमाइश हमारे पास आई है, फिल्म का नाम है मोहब्बतें, गीत की बोल है हमको हमी से चुरा लो। सुनना चाह रहे इस गीत को छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू। फरमाइश करता है इस गीत की हदगांव महाराष्ट्र से शंकर गिड़बिड़े, दिलीप गिड़बिड़े, कविता गिड़बिड़े। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिर नासिर, साजिद साजिद शाहिद। गोविंदपुर अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मुजावर, मिखाइल जनेब मुजावर। अस्तुपुर जिला मऊ से ही मजहर अली अंसारी, रजिया बैगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवान परवीन, अब्दुल्ला आजाद। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, किरण ठाकुर, सोनिया। जयराज फ्लोट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, जैस्मिन और प्रयागराज जी भट्ट। और भी दोस्त हैं जो इस गीत के साथ जुड़ रहे हैं। अकोट से विनायक बेंडे, श्रीमति मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए, किशन जी राव, डाबे राव। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को। गीत के बोल हैं हमको हमी से चुरा लो।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमारे पास आई है गीत के बोल हैं कभी खुशी कभी गम। सुनना चाह रहे इस गीत को सरगुजा मेन पार्ट से प्रभा टोमिन, प्रमिला टोमिन, आशा टोमिन, निशा टोमिन और पूरा टोमिन परिवार, तख्तपुर छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार साहू, मीरा देवी, गंगा देवी और मिश्री देवी साहू। फरमाइश करता है इस गीत के पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। पसंद किया इस गीत को ग्राम पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। जय जिनेन्द्र, श्रुता सिंह, परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संगे, महेश संगे, प्रगे संगे, प्रीतेश संगे और पूरा संगे परिवार। ग्राम लसुड़िया पता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। तो आइए दोस्तों सुन लेते हैं इस गीत को। गीत के बोल है कभी खुशी कभी गम।

साथियों, अभी हमने सुना कभी खुशी कभी गम गीत। यही अगली फरमाइश हमारे पास आई है, फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल हैं पहली पहली बार मोहब्बत की है। सुनना चाह रहे इस गीत को समस्तीपुर बिहार से मेहरा सिंह, ज्योति से रोहतास बिहार से सोनम सिंह, अनामिका सिंह, अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना भगत, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से हैं ये। तुलसी मस्किन, बीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, किशोर रिधान खुराना, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, बेबी वैदही जोशी, बेबी हंसिका जोशी, कुमारी अंकिता जोशी, अनूपपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती जयवंती केवर जी, खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफ्फार डावर जी, उत्तराखंड की ठंडी ठंडी वादियों से उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी जी, सोनू मोनू, राहुल रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुषि, शौर्य, दिनेश इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। छुरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानु शानु, बबन मनोर, कान्हा ठाकुर और हरिप्रिया जी। तो आइए दोस्तों सुन लेते हैं इस गीत को, गीत के बोल हैं पहली पहली बार मोहब्बत की है।

साथियों, अगली फरमाइश हमारे पास आई है। फिल्म का नाम है जब जब फूल के लिए। गीत के बोल हैं परदेसी उसे ना अखियां मिलाना। सुनना चाह रहे इस गीत को लोरमी चचेरी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी। इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून, मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं। फरमाइश करता है नरेंद्र कुमार डोम, सरिता बन्ना, प्रभा बन्ना, डोली और अंजलि डोम बुलंदशहर से हैं। विरमगांव गुजरात से हैं बेगम प्रमिला प्रदीप और बेगम हेमा प्रदीप। डोली लोहार बालों से सुनील कुमार और आशा देवी चंद्रनगर राजनाथ गांव से हैं। रविशंकर जयपुरी और प्रभा फर्जू। इसी गीत के साथ श्रोता साथियों जुड़ रहे हैं रेडियो के दीवाने ग्रुप दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकील अंसारी, रिहान अंसारी, बिहार एंक्लेव लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनारी, प्रकाश वीर राजपूत, अनुप्रिया चंद्रवंशी, बिहारीपुरी खंडवा से राकेश पिंकी और दुर्गा, जालंधर से मीना कौर और संदीप कौर, जेलरो रायगढ़ से लालचंद मिश्रा, कुमकुम मिश्रा। फरमाइश करता है दोस्तों इस गीत की शंभू दयाल खट्टक, विमला देवी, अमरजीत खट्टक, सुंदरलाल खट्टक, योगेश कुमार खट्टक, दीपक कुमार खट्टक, कुमारी पूजा खट्टक, जाखोत राजस्थान से हैं। बिहार स्टेट गुंडुमराव से राज एस डी अंसारी, नसरीन अंसारी, वलीउल्ला अंसारी, इंदिरा चौक दिल्ली से अजय मकार, डोंडी लोहार से प्रभा रानी बिलदार, कुमारी दुर्गा बिलदार, शंकर देव बिलदार, अब्दुल सत्तार अब्बासी मुगलपुरा बागपत से हैं ये। तो आइए दोस्तों सुन लेते हैं इस गीत को, रही हमारे आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत है।

तो साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल और स्वागत करती हूं आपका हमारे आज की सायकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। साथ ही श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। श्रोता साथियों, संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। अगला कार्यक्रम शुरू होगा आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज। इसे लेकर आएंगे प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 5:30 पर। इसके बाद हम रुक करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन की ओर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:00। फिर अगला कार्यक्रम शुरू होगा इसी कड़ी में किसान भाइयों का खेतीबाड़ी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगी अंजलि पारेशर और इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। दोस्तों, कार्यक्रमों की रूपरेखा में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7:00। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी अंजलि पारेशर। अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मनीषा पटेल यानी कि मेरे साथ में, और मेरे साथ होगी हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसके बाद आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे ठीक 8:00। दोस्तों, मनोरंजन की होगी पूरी भरमार, तभी आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत ठीक 8:30 पर। श्रोता साथियों, इन्हीं नगमों के बाद हम रुक करेंगे गजलों की ओर। सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को रात्रि 9 से 10 बजे तक। तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

0: जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है तो वो घटना उसके अंतर को झकझोर देती है। समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी होती है मनुष्य का हृदय भी उतना ही अधिक विरोध करता है। उस घटना के उत्तर में वो न्याय मांगता है और ये योग्य भी है। वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का अन्याय व्यक्ति की आस्था और विश्वास का नाश है। किंतु ये न्याय क्या है, न्याय का अर्थ क्या है? अन्याय करने वाले को अपने कार्य पर पश्चाताप हो और अन्याय भुगतने वाले के मन में फिर से विश्वास जगे समाज के प्रति, इतना ही अर्थ है ना न्याय का। किंतु जिसके हृदय में धर्म नहीं होता वो न्याय को छोड़कर बैर और प्रतिशोध को अपनाता है, हिंसा के बदले प्रतिहिंसा की भावना लेकर चलता है। स्वयं भोगे हुई पीड़ा से कहीं अधिक पीड़ा देने का प्रयत्न करता है और इस मार्ग पर चलते अन्याय को भुगतने वाला स्वयं अन्याय करने लगता है। शीघ्र ही वो अपराधी बन जाता है। अर्थात न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत कम अंतर होता है और इसी अंतर का नाम है धर्म। क्या ये सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व करो भोजन होवे, क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
3: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
2: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
3: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपने खवाना में दार, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
2: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो अनिमिया थकी बची सकंगा।
4: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
6: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल।
1: मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट।
2: और मैं हूं आप सभी के साथ दोस्तों आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर। स्वीकार कीजिएगा दोस्तों हम दिनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में।
2: जी हाँ।
1: आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातचीत रहने वाली है कि जब हम सहज होते हैं तभी अपने भीतर की ताकत को पहचान पाते हैं।
2: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, आज की दुनिया भागदौड़, प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाओं से भरी हुई है। हर व्यक्ति खुद को साबित करने की कोशिश में लगा है। कोई नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहा है मनीषा, तो कोई परीक्षा में सफलता के लिए,
2: बिल्कुल,
1: तो कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन कशिश, इस दौड़ में अक्सर हम एक महत्वपूर्ण चीज है वो खो देते हैं, वो है अपनी सहजता।
2: बिल्कुल,
1: हम इतने तनाव में जीने लगते हैं श्रोता साथियों कि अपने भीतर मौजूद क्षमताओं को पहचान ही नहीं पाते। जबकि सच्चाई ये है कि मन जितना शांत और सहज होगा हमारी सोच उतनी ही स्पष्ट होगी और हमारी शक्ति उतनी ही अधिक दिखाई देगी।
2: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर हम हमारे युवा साथियों से ढेर सारी बातें जरूर करेंगे।
1: बिल्कुल,
2: लेकिन जैसा कि शुरुआत में हम उन्हें पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं, तो आज भी शुरुआत में श्रोता साथियों को सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल,
2: तो दोस्तों आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त जागृति भट्ट के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं, जब आप सहज होते हैं तभी अपने भीतर की ताकत को पहचान पाते हैं।
1: जी हाँ
0: कशिश और जागृति जी, हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में सफलता, आत्मविश्वास और खुशहाली का सबसे बड़ा आधार उसकी आंतरिक शक्ति होती है।
2: बिल्कुल,
0: प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अपार क्षमता और अद्भुत शक्तियाँ छिपी होती हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अक्सर लोग उन्हें पहचान नहीं पाते हैं।
2: जी हाँ।
0: इसका मुख्य कारण श्रोता साथियों यह है कि वे अपने जीवन में तनाव, भय, चिंता और दूसरों से तुलना करने में उलझे रहते हैं।
1: जी हाँ।
0: जब मन अशांत होता है साथियों, तब व्यक्ति अपनी वास्तविक शक्ति को नहीं देख पाता। उसके विपरीत जब व्यक्ति सहज, शांत और स्वाभाविक रहता है जागृति जी, तब वह अपने भीतर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने लगता है।
2: जी
1: बिल्कुल
2: हाँ।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। ऐसे में श्रोता साथियों, जब हमारा मन शांत होता है, विचार हमारे स्पष्ट होते हैं और हम स्वयं को स्वीकार करना जानते हैं, तभी हम अपनी वास्तविक पहचान बना पाते हैं।
2: बिल्कुल,
1: कह सकते हैं कि सहजता केवल एक अवस्था नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। श्रोता साथियों, ये हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है और हमारे भीतर छिपी असीम संभावनाओं का परिचय कराती है।
2: जी हाँ।
1: हम देखते हैं कि सहजता का मतलब है स्वयं के साथ स्वाभाविक होना।
2: बिल्कुल,
1: बिना किसी दिखावे के, बिना किसी डर के और बिना किसी बनावट के जीवन जीना जागृति जी।
2: जी हाँ कशिश, क्योंकि सहजता यानी कि आलस्य या लापरवाही नहीं है। सहजता का अर्थ स्वयं के साथ स्वाभाविक होना, जैसा कि आपने बताया था।
1: बिल्कुल,
2: बिना दिखावे के, बिना आवश्यक डर के, बिना किसी बनावटीपन के जीवन जीना। श्रोताओं, जब व्यक्ति हर समय चिंता में रहता है तब उसका मन बिखर जाता है।
1: बिल्कुल,
2: वो अपनी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा डर, तनाव और नकारात्मक सोच में खर्च कर देता है। मनीषा,
1: बिल्कुल,
2: कई बार हम देखते हैं कि किसी काम को इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे।
1: बिल्कुल,
2: हम अपनी गलतियों से इतना डर जाते हैं कशिश की कोशिश ही नहीं करते। धीरे धीरे ये डर हमारे आत्मविश्वास को कम कर देता है। लेकिन श्रोता साथियों, जब हम सहज रहते हैं तब हम गलतियों को सीखने का अवसर समझते हैं।
1: जी हाँ।
2: हम हर चुनौती को खुले मन में स्वीकार करते हैं।
1: बिल्कुल,
2: इसीलिए आपसे कहना चाहेंगे श्रोताओं कि डर शक्ति को छिपाता है और सहजता शक्ति को जगाता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर छिपी होती है शक्ति। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को कुछ विशेष गुणों के साथ बनाया होता है।
1: बिल्कुल,
0: किसी में नेतृत्व की क्षमता होती है, किसी में कला का कौशल होता है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है तो कोई लोगों की मदद करने में कुशल होता है।
1: जी जी,
0: कोई कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच रखता है। लेकिन श्रोता साथियों, इन गुणों को पहचानने के लिए मन का शांत और सहज होना बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल
1: बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा। इसी के साथ अगर बात करें सहजता और आत्मज्ञान के संबंध की, तो देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसकी आत्मसमझ होती है। जब हम श्रोता साथियों लगातार तनाव, चिंता और तुलना में जीते हैं, तब हमारा ध्यान बाहर की दुनिया पर केंद्रित रहता है।
2: बिल्कुल,
1: लेकिन

0: हम सहज होते हैं तब हमारा ध्यान भीतर की ओर जाता है। हम देखते हैं कि यही वह क्षण होता है जब हम ये समझते हैं कि हमारी वास्तविक रुचि क्या है, हमारी विशेषताएं क्या है, हमारी कमजोरियां क्या है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में जागृति जी सहजता हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है और आत्मज्ञान ही है जो शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि जरा हम प्रकृति को देख लेते हैं। सूरज बिना किसी घबराहट के रोज उगता है, नदी बिना रुके बहती रहती है, पेड़ बिना किसी दिखावे के फल देता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, प्रकृति का हर तत्व सहज है इसलिए वो अपनी पूरी क्षमता से कार्य करते हैं। यदि नदी ये सोचने लगे कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे तो वो बहना छोड़ देगी। यदि पेड़ ये सोचने लगे कि फल देने से क्या होगा तो वो सूख जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य भी जब अपनी सहजता खो देता है तब उसकी प्रगति रुकने लगती है। श्रोताओं, आपसे कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि युवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर होता है।
0: बिल्कुल,
1: इस समय सपने बनते हैं और भविष्य की नींव रखी जाती है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन आज का युवा अक्सर तुलना में उलझ जाता है। कशिश और मनीषा, सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर वो स्वयं को कमतर समझने लगता है। वो सोचता है उसे भी वैसा ही दिखना चाहिए जैसा वो बनना चाह रहा है।
0: बिल्कुल,
1: यहीं से वो असहजता शुरू हो जाती है। जबकि हर व्यक्ति की अपनी अलग क्षमता होती है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई खेल में अच्छा होता है और कोई कला में। तो हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि जब युवा स्वयं को स्वीकार करता है तभी वो अपनी असली ताकत पहचान पाता है।
2: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि तनाव है वो हमारी शक्ति को छुपा देता है।
1: बिल्कुल,
2: जब व्यक्ति अत्यधिक तनाव में रहता है तो उसके सोचने और समझने की क्षमता भी प्रभावित होती है।
0: बिल्कुल,
2: उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है, निर्णय लेने में कठिनाइयां होती है और छोटी छोटी समस्या भी बड़ी लगने लगती है। मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है। श्रोता साथियों, ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी क्षमताओं को भूल जाता है। इसीलिए अपनी ताकत को पहचानने के लिए तनाव मुक्त रहना बहुत जरूरी है।
0: जी बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो जैसा कि युवा साथियों से हमारी कार्यक्रम के माध्यम से बातें बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना एक और प्यारे से गीत के साथ मनोरंजन करवाएं।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल,
1: तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत।

0: साथियों, इस गीत के साथ फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। हमारी बातें चल रही थी इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जब हम सहज होते हैं तभी अपने भीतर की ताकत को पहचान पाते हैं। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, ये धीरे धीरे ही विकसित होता है। जब हम अपने विचारों और क्षमताओं को स्वीकार करते हैं मनीषा और कशिश, तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तब सहजता भी अपने आप बढ़ने लगती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि सहजता है वो हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। जो व्यक्ति सहज रहता है वो स्वयं पर विश्वास करना सीख जाता है, उसे अपनी कमियों का ज्ञान हो जाता है और साथ ही वो अपनी खूबियों को पहचानने लगता है। असफलताओं से डरता नहीं है बल्कि नए अवसरों का स्वागत करता है। श्रोता साथियों, यही आत्मविश्वास उसकी आंतरिक शक्ति को बाहर लाने का काम करता है।
2: जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। इसी के साथ अगर तुलना की बात की जाए तो ऐसा बताया जाता है कि तुलना हमें कमजोर बनाती है।
3: बिल्कुल
2: साथियों, आज सोशल मीडिया ने तुलना को एक जीवन का हिस्सा बना दिया है।
1: जी,
2: कोई किसी की सफलता देख रहा है, कोई किसी की नौकरी, तो कोई किसी की सुंदरता पर ध्यान दे रहा है। जागृति जी, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोकप्रियता से जलते हैं।
3: बिल्कुल
2: श्रोता साथियों, धीरे धीरे व्यक्ति स्वयं को इन सभी चीजों को देखकर कमतर समझने लगता है। लेकिन जब हम सहज होते हैं तब हमें ये समझ आ जाता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है।
1: बिल्कुल,
2: एक पेड़ आम देता है तो दूसरा पेड़ नीम देता है। दोस्तों, दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। इस प्रकार हर युवा के भीतर अलग अलग प्रतिभाएं होती है।
1: बिल्कुल,
2: सहजता हमें अपने विशिष्टता को स्वीकार करना सिखाती है।
0: जी हाँ कशिश, इसी कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि अपने भीतर की जो ताकत है उसे हमें पहचानना होगा, यानी कि स्वयं को समय देना होगा, अपनी खूबियों को पहचानना होगा, गलतियों से डरना नहीं है, वर्तमान में जीना सीखना होगा और सकारात्मक लोगों के साथ रहना होगा।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि कहा गया है मनीषा और कशिश की, जो खुद को समझ लेता है वो दुनिया की हर चुनौती को पार कर लेता है।
1: जी जी हाँ।
0: श्रोताओं, जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी ही, कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता, लेकिन कठिनाई के समय हमारी प्रतिक्रिया ही तय करती है कि हम टूटेंगे या मजबूत बनेंगे।
1: बिल्कुल,
0: जब संकट आता है तब घबराहट हमारी सोचने की क्षमता कम कर देती है, लेकिन यदि हम सहज बने रहे तो हमारा मन समाधान खोजने लगता है।
1: बिल्कुल,
0: और जैसा कि कहा गया है कि मुश्किलें ताकत को नहीं रोकती, घबराहट रोकती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही अगर हम बात करें कि युवाओं के लिए सहजता क्यों आवश्यक है, तो हम देखते हैं कि आज का युवा अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है।
3: बिल्कुल,
1: प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव, करियर की चिंता, सोशल मीडिया का प्रभाव, परिवार और समाज की अपेक्षाएं, साथ ही रोजगार की चुनौतियां, इन सभी परिस्थितियों में यदि युवा स्वयं को सहज रखे तो वह बेहतर निर्णय ले सकता है और अपनी प्रतिभा का सही उपयोग कर सकता है।
2: बिल्कुल आपने सही कहा। इसी के साथ तनाव हमारी शक्ति को ढक देता है साथियों। अगर इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझे तो कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक साफ झील है। जागृति जी, जब झील का पानी शांत होता है तब उसका तल स्पष्ट दिखाई देता है।
3: बिल्कुल,
2: लेकिन वहीं जब पानी में लहरें उठती है तब हमें कुछ भी साफ नहीं दिखाई देता। दोस्तों, हमारा मन भी उसी झील की तरह है। तनाव, डर, क्रोध और चिंता मन में लहरें पैदा करते हैं और इन लहरों के कारण हम अपनी वास्तविक क्षमता नहीं देख पाते हैं।
1: बिल्कुल,
2: वहीं जब हमारा मन शांत और सहज होता है साथियों, तब हमारी आंतरिक शक्तियां हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है।
1: जी हाँ,
3: जी हाँ।
2: देखा जाता है कि अधिकांश युवा साथी असफलता से डरते हैं, लेकिन हमारे युवाओं को हम बताना चाहेंगे कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता केवल प्रतिभा से मिलती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि सफलता के लिए मानसिक संतुलन और सहजता भी उतना ही जरूरी है।
2: बिल्कुल,
0: कई प्रतिभाशाली लोग केवल इसीलिए पीछे रह जाते हैं मनीषा, क्योंकि वे अपने डर और तनाव पर नियंत्रण नहीं रख पाते। दूसरी ओर कई सामान्य लोग अपनी सहजता, धैर्य और निरंतर प्रयास से असाधारण सफलता प्राप्त कर लेते हैं।
2: जी हाँ,
0: तो कशिश और मनीषा, हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि सफलता केवल ये नहीं है कि हम कितना जानते हैं, बल्कि यह भी है कि हम दबाव में कितना शांत रह सकते हैं। श्रोताओं, आपको दुनिया में किसी और जैसे बनने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल अपने भीतर छिपे उस व्यक्ति को पहचानना है जो अद्वितीय है, सक्षम है और संभावनाओं से भरा हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: अपने मन से डर का बोझ हटाइए, स्वयं को स्वीकार कीजिए, अपनी गलतियों को शिक्षक बनाइए, अपने सपनों पर विश्वास कीजिए। याद रखिए, जिस दिन आप स्वयं के साथ सहज हो जाएंगे उसी दिन आपको अपनी वास्तविक शक्ति दिखाई देने लगेगी।
1: बिल्कुल,
0: आप समझ पाएंगे कि जिन कठिनाइयों को आप पहाड़ समझते थे वे वास्तव में आपके साहस के सामने बहुत छोटी है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे, जब व्यक्ति सहज होता है तभी अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को पहचान पाता है।
2: बिल्कुल,
1: तनाव, भय और तुलना हमारी क्षमताओं पर पर्दा डाल देते हैं, जबकि सहजता उन्हें उजागर करती है।
2: बिल्कुल,
1: युवाओं को चाहिए कि वे स्वयं पर विश्वास रखें, अपने मन को शांत रखें और जीवन की चुनौतियों का सामना साहसपूर्वक करें।
2: जी हाँ,
1: प्रत्येक युवा के भीतर अपार शक्ति होती है साथियों, आवश्यकता केवल उन्हें पहचानने और सही दिशा में उपयोग करने की है।
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: याद रखिए साथियों, हमारी सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपी होती है और उसे पहचानने का मार्ग सहजता से होकर गुजरता है।
2: बिल्कुल, आपने सही कहा। तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में युवा साथियों से हमारी बातें चल रही थी कि जब हम सहज होते हैं तब अपने भीतर की जो ताकत है हम उसे अच्छी तरीके से पहचान पाते हैं।
3: बिल्कुल,
2: तो बातें जैसा कि ढेर सारी हुई और अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
2: तो जागृति जी और मनीषा, कार्यक्रम से हम विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे युवा साथियों को एक और प्यारा सा गीत सुनवाएं।
3: जी
1: बिल्कुल।
3: हाँ।
1: कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागुटेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। अंत में बस आपसे यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि सहजता कमजोरी नहीं है, आत्मबल का सबसे सुंदर रूप है।
1: बिल्कुल।
0: जो स्वयं के साथ सहज हो जाता है वो जीवन की हर चुनौती पर विजय पा लेता है। अपनी पहचान दूसरों की नजरों में नहीं अपने भीतर खोजिए। यकीन मानिए, आपके अंदर ऐसी शक्ति छिपी है जो आपके हर सपने को हकीकत में बदल सकती है।
1: जी हाँ,
0: आपसे कहना चाहेंगे सहज बने, सजग बने, स्वयं को पहचाने, भीतर की शक्ति को जगाए और जीवन को महान बनाए। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
2: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdara.org।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
2: और आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल,
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
3: नमस्कार।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर हाजिर होते हैं तो हमारा आपसे बातचीत का एक नया विषय रहता है। आज भी कार्यक्रम में ऐसा ही एक नया विषय लेकर हम हाजिर हैं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सच्चा बचपन हमारे प्यारे बच्चों का कार्यक्रम है, क्योंकि एक माता पिता होने के नाते हम सभी की ये इच्छा होती है कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसा ही एक जरूरी विषय हम कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताएंगे। लेकिन जैसा कि श्रोता साथियों, आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में हम आपको पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं, तो पहले आइए मनोरंजन कर लेते हैं इस गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले मैंने आपको बताया था कि आज के इस कार्यक्रम में हम एक नए विषय को लेकर हाजिर हैं। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को अजनबियों से सावधान रहना हम कैसे सिखाएं, क्योंकि श्रोता साथियों, हम जैसा कि जानते हैं कि हमारी बच्चों की मासूमियत उनकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर उन्हें सही जानकारी न दी जाए तो यही मासूमियत खतरे में भी बदल सकती है साथियों, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे बच्चे इतने मासूम होते हैं कि उनकी मासूमियत का फायदा हर कोई उठा लेता है। जैसा कि हमारे बच्चों को चॉकलेट्स, खिलौने, बहुत कुछ चीजें पसंद होती हैं, और जो अजनबी होते हैं जो बच्चों के लिए खतरनाक है, वे इन्हीं चीजों का फायदा उठाकर हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज का हमारा कार्यक्रम इसी विषय पर आधारित है साथियों, तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
1: गुड़िया बेटा, कहाँ हो तुम?
2: मम्मी, मैं यहाँ हूँ, देखो मैंने क्या बनाया है।
1: अरे वाह, बहुत सुंदर ड्राइंग है, ये कौन है इसमें?
2: ये आप हो और ये मैं, और ये हमारा घर।
1: बहुत प्यारा है बेटा, लेकिन आज मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ।
2: क्या मम्मी?
1: बेटा, अगर कोई अजनबी तुम्हें कुछ दे, जैसे कि चॉकलेट और खिलौना, तो क्या करोगी?
2: शायद ले लूं।
1: नहीं बेटा, यही सबसे बड़ी गलती होती है। अजनबी कोई भी हो सकता है, वो अच्छा भी लग सकता है, लेकिन हमें सावधान रहना जरूरी है।
2: लेकिन मम्मी, अगर वो बोले कि आपको जानता है तो?
1: तब भी नहीं मानना है जब तक मैं या तुम्हारे पापा खुद ना कहें। अगर कोई जबरदस्ती करे तो क्या करना है?
2: पता नहीं।
1: जोर से चिल्लाना है बेटा, और नहीं कहना है, और तुरंत वहां से भागना है।
0: बच्चों, आज हम एक बहुत जरूरी चीज पर बात करेंगे, पता है क्या?
2: क्या?
0: अजनबियों से हम कैसे बचे।
2: मैम, क्या हर अजनबी बुरा होता है?
0: नहीं गुड़िया बेटा, हर कोई बुरा नहीं होता, लेकिन हमें हर अजनबी से सावधान रहना चाहिए। जैसे कि अगर कोई तुम्हें अकेले में बुलाए, या कुछ देने की कोशिश करे, या तुम्हें कहीं ले जाने की बात करे, तो तुम क्या करोगी?
2: मना कर दूंगी।
0: बहुत अच्छा, अब एक और जरूरी बात बच्चों, गुड टच और बेड टच।
2: मैम, ये क्या होता है?
0: जब कोई आपको प्यार से छुए और अच्छा लगे तो वो हुआ गुड टच, लेकिन वहीं अगर कोई ऐसा छुए जिससे आपको बुरा लग रहा है या अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो वो हुआ बेड टच, और अगर ऐसा हो तो
2: ना कहेंगे, भागेंगे और बताएंगे।
0: शाबाश।
2: अरे वाह, कितना मजा आ रहा है।
3: बेटा इधर आओ, ये चॉकलेट लो।
2: नहीं अंकल, मम्मी ने मना किया है।
3: अरे मैं तुम्हारी मम्मी का दोस्त हूँ, उन्होंने ही भेजा है।
2: मम्मी ने कहा था किसी की बात पर भरोसा मत करना। नहीं, मैं आपको नहीं जानती।
3: चलो मैं तुम्हें गुब्बारे दिलाता हूँ।
2: मुझे नहीं जाना, कोई है, बचाओ बचाओ।
1: गुड़िया क्या हुआ?
2: मम्मी, एक आदमी मुझे ले जाने की कोशिश कर रहा था।
1: बेटा तुम ठीक हो ना?
2: हाँ मम्मी, पर मैंने आपकी बात याद रखी।
1: मुझे तुम पे गर्व है, तुमने ना कहा, तुमने शोर मचाया, तुमने खुद को बचाया।
2: मम्मी, अगर मैं डर जाती तो?
1: इसलिए हम तुम्हें पहले से सिखाते हैं, ताकि तुम डर के बजाय समझदारी से काम लो।
0: बच्चों, आज गुड़िया ने हमें सिखाया है कि साहस और समझदारी से हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो गुड़िया बताओ कि हमें क्या करना चाहिए।
2: हाँ मैम, अजनबी से कुछ नहीं लेना, कहीं नहीं जाना, और हमेशा ना कहना।
0: ये हुई ना बात गुड़िया, तुमने बिल्कुल सही किया। अगर ऐसे ही सारे बच्चे करेंगे तो अजनबी हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो श्रोता साथियों, ये था हमारा आज का रेडियो नाटक कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को अजनबियों से सुरक्षित रहना सिखा सकते हैं। जैसा कि नाटक के माध्यम से भी हम समझ पाए हैं कि गुड़िया, जो कि एक बहुत ही बहादुर बच्ची है, जिसने हिम्मत के साथ सबसे पहले तो अपनी मम्मी की सारी बातों को सुना, और समझा भी, लेकिन जब वही समय उसके सामने भी आया तो उसने बिना डरे साहस के साथ उस अजनबी का सामना किया और सुरक्षित रही। तो बच्चों, कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ होता है तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, जैसा गुड़िया ने किया बिल्कुल वैसा ही करना है। ना कहना है, उनसे कोई भी चीज नहीं लेनी है और चिल्लाना है। तो श्रोता साथियों, इस नाटक से हम ये समझ पाए हैं कि बच्चों को डराना नहीं है बल्कि समझाना जरूरी है, उन्हें ना कहना सिखाना भी जरूरी है, और सबसे जरूरी बात श्रोता साथियों, जो कि आप अपने बच्चों को बताएं, उन्हें ये भरोसा दें कि वो खुलकर आपसे बात कर सके। ऐसे में याद रखें श्रोता साथियों, सावधानी ही सुरक्षा है और जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार। तो इन्हीं महत्वपूर्ण बातों के साथ अब मैं कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेने की अनुमति आपसे चाहूंगी। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी साथियों, एक और गीत के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम के नाटक के माध्यम से जो हमें संदेश मिला है वो आप अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे और अपने बच्चों को भी इस चीज के लिए सतर्क रहना सिखाएंगे। तो जैसा कि बातें हो चुकी है, समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। हमारी ईमेल आईडी भी लिख लीजिए साथियों, क्योंकि इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें बता सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम सच्चा बचपन में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार। साथ ही आप सभी को छोड़े चलते हैं साथियों एक और प्यारे से गीत के साथ में।

के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, नसोरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें। महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोन ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हम रेडियो हो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनो गणिमान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम के बहन बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक ना विषय ने हाथी। तो भाई बोनो आज अमारी कार्यक्रम में आपते की बातचीत नो विषय है कि आपड़े जे भाई बोन है ई खरीफ सीजन आवाने पहले हूँ तैयारी करीने मैंने जिंदगी एणनु जे उत्पादन है ई एणने असल तरीका तकी मिली सके। तो आज कार्यक्रम में अण विषय माते अमारी अब तक घणा कनी वाते थाएंगा पण कार्यक्रम शुरू करा एने पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे कर आपड़ी वाते। तो बायन बोनु आप हमर दरेजू आपड़ू रेडियो आपड़ी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: ભાઈન બનુ ગીત તો એશું પૂર્ણ અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સબનું ઘણીમાન સ્વાગત કરો હો અમારે આજની કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જેમ કે ગીત કે પહેલે અમે આપને વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળો હો કે ખરીફ સિઝનની પહેલા તકી આપણે ભાઈન બનો હરતે તૈયારી કરી જેન તકી એણાનું ઉત્પાદન જે હે એ એણાને અસલ તરીકા તકી મળી શકે. તો અણા વિશે માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ તકી જોડી રહી સોહનજી. તો સપ્તકી પહેલા આપણે હામરી લણાની વાતે ને મોરે કરા આપણી વાતે. સર નમસ્કાર.
1: નમસ્કાર
0: સર, આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં.
1: ધન્યવાદ
0: સર. જૈસા કી આજ આપ હમારી કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે જુડ રહે હૈ ઓર આજ હમારી કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ કે હમારે જો કિસાન ભાઈ બહેન હૈ વો આને વાલી ખરીફ કે સીઝન કી તૈયારી કિસ તરીકે સે કરે, ક્યા ક્યા કાર્ય યોજનાએ બનાએ જિસસે ઉનકા જો ઉત્પાદન હૈ વો ઉન્હે સહી માત્રા મેં મિલ પાએ.
1: સભી કિસાનો કો એક બાર પુનઃ નમસ્કાર. જૈસા કી હમારા જો ખરીફ સીઝન હૈ અભી ચાલુ હોને વાલા હૈ, બારિશ આને કી તૈયારી હૈ ઓર એસા મેં માનતા હું કે આપ સભીને અપને ખેત અચ્છી તરહ સે તૈયાર કર લિયે હોંગે.
0: બિલકુલ.
1: ઓર ખાદ જો દેશી ખાદ આપકો ડાલના થા વો કેડા વાલા વો આપ ડાલ ચુકે હોંગે ઓર અપના ખેત જો હે પૂરી તરહ સે જોત કે તૈયાર કિયા હોગા તાકિ જૈસે હી બારિશ આયે બારિશ કા પાની જ્યાદા સે જ્યાદા ખેત કે અંદર જાય ઓર આપને જો પહેલે તૈયાર કરકે રખા હૈ વો ધૂપ મેં અચ્છી તરહ સે આપકા ખેત તપ ચુકા હૈ. इससे आपके जो भी हानिकारक जीव मिट्टी में है वो जीव जो या तो उड़ के बाहर चले गए या वो धूप की वजह से मर गए. और जो गहरी जुताई आपने करी है उससे जो फफूंदी नाशक जितने भी रोग आते हैं उनसे भी आपने अधिकतर जो है उससे भी निजात मिलती है. अभी आपको जैसे ही बारिश होगी उस समय बीज की व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण रहती है.
0: बिल्कुल.
1: और इसमें जो खरीफ की फसल है उसको किसानों का जुआ कहा जाता है इस फसल को. और जुआ इसीलिए कहते हैं कि अगर किसी ने जो बारिश आई और उस बारिश के उचित समय में जिसने भी बुआई कर ली तो वो जीत जाता है और जो पीछे रह जाता है वो बहुत सी बार जो है उसके उत्पादन नहीं होता है, या तो अतिवृष्टि बाद में होती है तो उसका बीज गल जाता है या फिर समय पे बुआई नहीं करने के कारण जो है उसको नुकसान उठाना पड़ता है या फसल में जैसे चारा ज्यादा हो जाएगा, खरपतवार ज्यादा हो जाएगा तो ऐसी परेशानियों से जूझना पड़ता है.
0: बिल्कुल.
1: तो समय काफी महत्वपूर्ण होता है तो इसलिए हमको सारी चीजें पहले व्यवस्थित करके रख देनी चाहिए. हमारे को हमारे खेत वाइज बीज को अलग रख देना चाहिए कि फला खेत में मैं ये फसल करूंगा, इसके साथ में ये मिक्स करूंगा, इसके लिए कितना बीज हमको चाहिए उस हिसाब से हम बीज की व्यवस्था करके पहले से रख दे ताकि बारिश होते ही तुरंत
0: हम
1: बुआई कर सके.
0: बिल्कुल.
1: और उसकी मात्रा भी जैसे मात्रा तो आप डिसाइड करते ही है पहले कि क्या कितना डालना. और अधिकतर बुआई में जो है अभी हमारे यहाँ पे जैसे कि सिंगल फसल है जैसे सोयाबीन का अभी काफी बड़ा है एरिया, लेकिन किसान साथियों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जो सोयाबीन है, सोयाबीन को कहते हैं कि तेल बनता है लेकिन हम हमारे घर के स्तर पे हम उसका तेल नहीं निकाल सकते, ये खाने के लिए काम में नहीं आता है, है ना. और दूसरा सिर्फ ये बाजार में बेचने के लिए ही काम है, एक तरह से नकदी फसल की तरह है. और इसमें जो है बहुत सारी संभावनाएं भी रहती है जैसे कि बारिश ज्यादा हो गई तो ये पूरी तरह से गल जाता, पूरी फसल बेकार हो जाती है. हम देखते हैं कि पूरे के पूरे खेत सूख जाते हैं.
0: बिल्कुल.
1: तो जो किसान सोयाबीन लगाने का सोच रहे हैं वो उसका एक एरिया आप थोड़ा कम करें और आप हंगणी खेती को उस खेत में एक खेत मान लो दो खेत आप सोयाबीन के करने वाले हैं आपने सोचा है तो एक खेत में आप हंगणी खेती करें.
0: बिल्कुल.
1: और हंगणी खेती को हमारे यहाँ वागड़ में हाथ हंगरिया भी बोलते हैं, मतलब अलग अलग तरह के जो बीज है जो हमारे परिवार की जरूरत है. इसमें आपका अनाज वाली फसलें आ गई, दाल वाली फसलें आ गई, तेल देने वाली फसलें आ गई, सब्जी की फसलें आ गई, फल देने वाली फसलें आ गई, तो इसमें सारी फसलों का जो मिश्रण करके और किसान लगाता है.
0: बिल्कुल.
1: और कुछ फसलें हैं वो लाइन में बुआई करता है और फिर उसके बाद में कुछ फसलें हैं वो बीच में छिड़काव करता है जो बहुत कम मात्रा में होती है। तो इस तरह से इसका ये फसल करने से जो जमीन का पूरा उपयोग होता है और जमीन के सभी हिस्से में कुछ न कुछ फसलें होती है, हर लेयर पे फसलें होती है।
0: बिल्कुल,
1: जमीन के नीचे हम देखेंगे कि रेंगने वाली फसलों में जैसे काचरा है, डांगरा है, ककड़ी है, ये ऐसे रहेगी। फिर थोड़ा ऊपर हम देखेंगे तो जैसे मूंगफली है, मूंग है, और इस तरह की फसलें रहेगी।
0: जी जी।
1: फिर थोड़ा ऊपर हम देखेंगे तो आपका मक्का है, तुअर है, तिल है, इस प्रकार की फसलें होगी, है ना। और कुछ फसल ऐसी होगी जो लंबे समय तक चलती है और कुछ फसल है जो जल्दी पक जाती है। तो इसमें पकने की जो है वो भी समय लगातार, मतलब समय अलग अलग समय पे है।
0: बिल्कुल।
1: ताकि ये इसीलिए कहते हैं कि एक बार उसमें आप फसल डालो, एक बार फसल करो और बार बार उसको काटो, जब भी आपके घर में जरूरत हो तब उसको निकाल के लाओ। और इसमें गोसी बार क्या है कि जैसे निराई गुड़ाई वगैरह की ज्यादा समस्या नहीं आती, क्योंकि हर हिस्से पे कुछ न कुछ फसलें रहती है। और जो नीचे बेल वाली जो फसलें है वो मल्चिंग वगैरह का काम भी कर देती, कम वर्षा होती है तो भी उसमें बहुत कुछ पक्के किसान के लिए निकल जाता, अगर कम वर्षा होती है तो भी बहुत कुछ निकलेगा और ज्यादा बरसात होगी तो भी बहुत कुछ निकलेगा।
0: बिल्कुल,
1: बिल्कुल एकदम किसान को शून्य कभी भी नहीं देगी ये फसल। तो मेरी अपील है आप सभी श्रोताओं से कि एक खेत में कम से कम आप इसको करें, आपकी ये परंपरागत पद्धति है और इसको करें और इसका बहुत सारा फायदा है। किसान सोचता है कि अरे यार ये जो है ये पूरा का पूरा घर में खाने के लिए उपयोग हो जाता है, मेरे बेचने के लिए कुछ बचता नहीं। लेकिन क्या किसान भाई जो खाने के लिए भी तो बाजार से खरीद के लाता है, और वो भी खाने के लिए कौन सा लाता है? जैसे कि व्यवसायी खेती करेंगे तो वो उसमें भरपूर केमिकल डालेंगे, है ना, भरपूर रासायनिक खाद डालेंगे, तो उससे आप जो आज के समय में जो बीमारियां हो रही है उससे तो आप अवगत हो। तो एक तरह से बीमारी आप बाजार से खरीद के लाने से अच्छा है कि हमारा एक खेत हम ये हाथ हंगरिया बोलते हैं या हांगणी बोलते हैं या हंगड़ी बोलते हैं, जो भी आपकी भाषा में बोलते होंगे, इस तरह की खेती आप करें। और इसमें मैंने देखा पिछले साल हमने सज्जनगढ़ में एक खेत में इसमें कितनी फसलें हम खा सकते हैं, तो जब हमने उसको देखा तो हमारे को उसमें से खाने वाली जो फसलें 35 फसलें उसमें से ऐसी निकली जिसको हम खा सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और उसका समय बोने के 15 दिन से वो खाने लायक हो जाती है, उसमें से चाहे हरी सब्जी है, हरी पत्तेदार सब्जियां है जो खाने के लिए निकलती है, बहुत सारी फसलें हम उसमें उगाते नहीं है फिर भी उसके अंदर उग जाती है और वो हमारे खाने के लिए काम में आती है, हमारे सब्जी बनाने के लिए काम में आती है। इसके लिए मैं अपील करना चाहूंगा कि एक खेत उसके लिए आप आरक्षित रखें, बाकी आप बीज की तैयारी करके रखें, और जैसे ही बारिश होवे आप तुरंत, जैसे ही आपका खेत बोने लायक होवे तुरंत बो दीजिए, तो उससे आपको काफी फायदा होगा।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने कार्यक्रम में हमें बताया कि हमें किस तरीके से आने वाली खरीफ सीजन की तैयारी करनी है और क्या क्या कार्य योजनाएं करनी है, और जैसा कि आपने बताया कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं उन्हें हांगड़ी खेती करनी चाहिए ताकि इसके माध्यम से उन्हें कई सारे लाभ मिलते हैं। और हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को इस विषय के बारे में अवगत करवाते ही रहते हैं और उन्हें बताते रहते हैं कि इसके कई सारे लाभ हैं। हम देखते हैं कि इससे हमारे किसान भाई बहनों की आमदनी है वो भी नहीं रुकती है और हमारे घर का पोषण भी बना रहता है, जो कि अभी के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। तो सर, जैसा कि कार्यक्रम में आपने बातें बहुत अच्छी हमारे श्रोता साथियों को बताई है, तो अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से?
1: अंत में मैं यही संदेश देना चाहूंगा किसान साथियों को, समय से बुवाई करें और बारिश का पानी है उसको आप रोक के रखें, उसको व्यर्थ नहीं जाने दे और जल को बचत करें।
0: बिल्कुल। तो सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: धन्यवाद।
0: जीम के भाई बोनो अवड़े अपने व्यास में सोहनजी सर जुड़े तक ने घनी अशल तरीके बताड़ियों के अपना ने कई कई तैयारी करवी है ने हरते आपड़े हांगनी खेती करवी है। इन तकी आपड़ा देखंगा के अगर कोई फसल खराब भी थी सा तो बीजी फसल तकी आपड़ा ने उत्पादन मिली सके आय न स्त्रोत आपड़े बनाता करेंगे। तो आशा करा हो कि आ हंगरी बातें आपने गमी होंगा केम के हवे टाइम थी गयो है अपने अणस कार्यक्रम तकी सूटा पड़वानो। तो सूटा तो पड़ पण साथे पहले हमरी लायक और गीत ने मोरे पड़ा सूटा।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नया विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातचीत रहने वाली है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़कर जाएंगे।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, जब हम अपने जीवन की यात्रा पूरी करेंगे तब आने वाली पीढ़ियां हमारे बारे में क्या कहेंगी। क्या हम उनके लिए केवल ऊंची इमारतें, सड़कें और भौतिक सुविधाएं छोड़कर जाएंगे, या फिर ऐसे मूल्य, ऐसी सोच और ऐसा समाज भी छोड़ेंगे जो उन्हें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे।
0: बिल्कुल
1: अंजलि, मनुष्य का जीवन तो सीमित है, लेकिन हमारे जो कर्मों का प्रभाव पीढ़ियों तक बना रहता है। हमारे पूर्वजों ने हमें भाषा, संस्कृति, परंपराएं, खेल, जंगल, नदी और सामाजिक मूल्य सौंपे हैं।
0: बिल्कुल
1: आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी आने वाली पीढ़ियों को ऐसा भविष्य दे जिस पर हमें गर्व हो सके। यही सच्चे स्वराज का आधार है, केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि भविष्य के समाज के लिए भी जिम्मेदारी निभानी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें बनी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम के पहले इस गीत को।
1: बिल्कुल

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले बातें भी रही थी और विषय भी अवगत करवाया था कि आज बातें रहने वाली है आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़ कर जाए।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि, आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी विरासत एक सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण हो सकता है। यदि हम आज जंगलों को काट देंगे, नदियों को प्रदूषित कर देंगे और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करेंगे तो भविष्य की पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ बनाने की कोशिश करता है। कोई घर बनाता है, कोई व्यापार खड़ा करता है, कोई धन कमाता है तो कोई प्रतिष्ठा अर्जित करता है।
0: बिल्कुल।
1: हम अपने बच्चों और परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे हमें समय समय पर खुद से पूछना चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: वह है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़ कर जाएं। श्रोता साथियों, क्या हम केवल जमीन जायदाद छोड़ कर जाएंगे? क्या हम केवल बैंक बैलेंस और भौतिक सुविधाएं छोड़ कर जाएंगे? या फिर एक ऐसा समाज, ऐसे संस्कार, ऐसा वातावरण, ऐसे मूल्य छोड़ कर जाएंगे जो आने वाली पीढ़ियों को वास्तव में बेहतर बना सके?
0: बिल्कुल।
1: अक्सर विरासत का अर्थ जागृति जी धन दौलत, मकान, खेत या कारोबार से लगाया जाता है। यह महत्वपूर्ण जरूरी है, लेकिन यह पूरी विरासत नहीं है। कई ऐसे परिवार हैं जिसके पास अपार संपत्ति थी लेकिन अच्छे संस्कार नहीं थे। परिणाम यह हुआ कि पीढ़ियों के बीच मतभेद बढ़े और परिवार बिखर गया।
0: बिल्कुल।
1: वहीं दूसरी ओर ऐसे परिवार भी हैं जिनके पास सीमित संसाधन थे लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को ईमानदारी, मेहनत, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की शिक्षा दी। ऐसे परिवार पीढ़ियों तक सम्मान पाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: सच्ची विरासत श्रोता साथियों वही है जो समय के साथ और मूल्यवान होती जाए, न कि वह धीरे धीरे समाप्त हो जाए।
0: जी हाँ अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि श्रोता साथियों, धरती केवल हमारी नहीं है, ये उन बच्चों की भी है जो अभी जन्मे नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: उन्हें स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और हरियाली से भरपूर वातावरण मिलना चाहिए। यदि हम पेड़ लगाते हैं, जल संरक्षण करते हैं अंजलि, और पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम वास्तव में भविष्य के लिए अमूल्य उपहार छोड़ रहे होते हैं। जैसे कहा भी गया है कि पेड़ बचाएंगे, जल बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सजा पाएंगे।
1: जी जी।
0: धन दौलत समय के साथ समाप्त हो सकते हैं लेकिन संस्कार पीढ़ियों तक चलते हैं। यदि माता पिता और समाज बच्चों को ईमानदारी, करुणा, सम्मान और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाते हैं तो यही मूल्य आगे भी जीवित रहते हैं।
1: जी।
0: आज के समय में अंजलि हम देखते हैं कि तकनीक और आधुनिकता के साथ साथ मानवीय मूल्यों का संरक्षण भी बहुत जरूरी है। यदि हम अपने बच्चों को केवल सफल बनाना सिखाएंगे श्रोताओं और अच्छा इंसान बनाना नहीं सिखाएंगे तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा उपहार है अच्छे संस्कार, क्योंकि यही उन्हें सही और गलत के बीच अंतर समझने की शक्ति देता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, यदि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ सबसे मूल्यवान छोड़ सकते हैं तो वह अच्छे संस्कार ही है। बच्चे वही सीखते हैं जो घर में देखते हैं।
0: बिल्कुल।
1: यदि वे बड़ों का सम्मान देखेंगे तो सम्मान करना सीखेंगे। यदि वे ईमानदारी देखेंगे तो ईमानदार बनेंगे। यदि वे सहयोग और सेवा का भाव देखेंगे तो समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। श्रोता साथियों, संस्कार किसी पुस्तक में नहीं मिलते, वे परिवार के व्यवहार से बनते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए हमें यह सोचना होगा जागृति जी कि हम अपने बच्चों को केवल सुविधाएं दे रहे हैं या जीवन जीने के सही मूल्य भी दे रहे हैं। कल्पना कीजिए श्रोता साथियों कि हम अपने बच्चों के लिए बड़ा घर बना दें लेकिन पीने का पानी साफ न बचे, हम उन्हें आधुनिक सुविधाएं दे दें लेकिन सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा न बचे, तो क्या ऐसी विरासत वास्तव में उपयोगी होगी? ये जागृति जी हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है।
0: जी हाँ,
1: आज पृथ्वी कई चुनौतियों का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन, जल संकट, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। यदि हम इन समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां हमें शायद इस बात के लिए याद करेंगी कि हमने सुविधाएं तो बढ़ा दी है लेकिन प्रकृति को बचा नहीं पाए।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए पेड़ लगाना, जल संरक्षण करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और पर्यावरण की रक्षा करना केवल वर्तमान की जरूरत नहीं बल्कि भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी है।
0: जी हाँ अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चली रही हैं, तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: जागृति जी, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें कि एक बेहतर समाज भी विरासत है। यानी कि दोस्तों, हम अपने बच्चों के लिए कैसा समाज छोड़कर जाना चाहते हैं? क्या ऐसा समाज जहां लोग एक दूसरे पर भरोसा न करें, जहां संवाद की जगह विवाद हो, जहां संवेदनशीलता की जगह स्वार्थ हो, या फिर ऐसा समाज जहां सहयोग सम्मान हो और मानवीय रिश्तों की गर्माहट हो?
1: बिल्कुल,
0: एक अच्छा समाज अपने आप नहीं बनता, उसे बनाने के लिए हर पीढ़ी को योगदान देना पड़ता है। आज जो हम बेहतर व्यवहार हर किसी के साथ करते हैं, वही आने वाले समाज की नींव बनाता है। जागृति जी कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि धन खत्म हो सकता है, लेकिन ज्ञान पीढ़ियों तक जीवित रहता है।
1: बिल्कुल,
0: यदि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा, सीखने की आदत और सही सोच दे सकें, तो यह उनकी सबसे बड़ी संपत्ति होगी। शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं है, शिक्षा व्यक्ति को सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। इसलिए हमें आने वाली पीढ़ियों को केवल डिग्री नहीं बल्कि सीखने की संस्कृति भी देनी होगी।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य की उपेक्षा बढ़ती भी जा रही है। यदि हम आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ आदतें नहीं देंगे तो उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल,
1: योग, व्यायाम, संतुलित आहार और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता एक महत्वपूर्ण विरासत हो सकती है। स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज और राष्ट्र का निर्माण करता है।
0: जी हाँ,
1: हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। लोक कला, लोक भाषाएं, त्योहार, पारंपरिक ज्ञान और सामाजिक मूल्य हमारी अमूल्य धरोहर है। आधुनिकता को अपनाना आवश्यक है, लेकिन अपनी जड़ों से कट जाना उचित नहीं है। यदि हम अपनी संस्कृति को सहज कर आगे बढ़ाएंगे श्रोताओं, तो आने वाली पीढ़ियां अपनी पहचान को गर्व से स्वीकार कर पाएगी।
0: बिल्कुल
1: अंजलि, आने वाली पीढ़ी को केवल अधिकारों की नहीं बल्कि कर्तव्यों की भी समझ होनी चाहिए। मतदान करना, कानून का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना अच्छे नागरिक की पहचान है। यदि हम अपने बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देंगे तो देश का भविष्य और अधिक मजबूत होगा।
0: जी हाँ जागृति जी, आज की तेज रफ्तार दुनिया में सफलता को अक्सर धन और प्रसिद्धि से जोड़ा जाता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जीवन का वास्तविक आधार मूल्य होते हैं। सत्य, ईमानदारी, करुणा, सहिष्णुता, सहयोग और जिम्मेदारी जैसे मूल्य व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं। यदि आने वाली पीढ़ियां इन मूल्यों के साथ आगे बढ़ेंगी तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकेंगी।
1: बिल्कुल,
0: सच्चा स्वराज केवल वर्तमान की सुख की बात नहीं करता, यह आने वाले कल के प्रति हमारी जिम्मेदारी की बात करता है। स्वराज का अर्थ है कि हम अपने निर्णयों के दूरगामी परिणामों को समझें। जब हम साधनों का उपयोग करें तो सोचें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बचेगा। जब हम समाज में कोई कदम उठाएं तो सोचें कि उसका प्रभाव भविष्य पर क्या होगा। यही दूरदर्शिता जागृति जी सच्चे स्वराज की पहचान है।
1: जी हाँ,
0: हमें हमारे जो बच्चे हैं या आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए स्वच्छ जल, स्वच्छ पर्यावरण, अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य, शिक्षा और ज्ञान, जिम्मेदारी, अनुशासन, प्रेम, आपसी सहयोग और सामुदायिक भावना, स्वास्थ्य, सामाजिक वातावरण, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, सत्य और ईमानदारी जैसी चीजें जो हैं वो विरासत में छोड़कर जानी है। ये ऐसी विरासतें हैं श्रोता साथियों जो समय के साथ और अधिक मूल्यवान होती जाती हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहेंगे कि जब इतिहास हमारे समय को याद करेगा तब वो केवल ये नहीं देखेगा कि हमने कितना कमाया या कितनी सुविधाएं जुटाई थी, वो ये भी देखेगा कि हमने आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी दुनिया छोड़ी थी। क्या हम उन्हें प्रदूषित नदियां, कटते जंगल, टूटते रिश्ते और बिखरते मूल्य देंगे, या फिर स्वच्छ पर्यावरण, मजबूत संस्कार, शिक्षा, ईमानदारी, सद्भावना और आत्मनिर्भरता की ऐसी विरासत देंगे जो उनके जीवन को बेहतर बनाए।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, सच्चा स्वराज केवल वर्तमान को सुधारने का नाम नहीं है। सच्चा स्वराज वो है जिसमें हम भविष्य की पीढ़ियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और ऐसा समाज बनाकर जाए जहाँ हर बच्चा सम्मान, अवसर और सुरक्षित वातावरण के साथ अपना जीवन जी सके।
0: बिल्कुल,
1: तो श्रोता साथियों, हम अपने पीछे केवल यादें नहीं बल्कि ऐसी सकारात्मक विरासत छोड़कर जाएंगे जो आने वाली पीढ़ियों के जीवन को प्रकाश से भर दे।
0: जी जी।
1: हमारी सबसे बड़ी विरासत हमारी संपत्ति नहीं, हमारे संस्कार है। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हमारा पद नहीं, हमारा योगदान है। और हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम आने वाली पीढ़ियों को हमसे बेहतर दुनिया दे कर जाए।
0: बिल्कुल,
1: ऐसा कल बना कर जाए अंजलि जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर पाए।
0: जी हाँ जागृति जी, एक दिन हम सभी इस दुनिया से चले जाएंगे। हमारे पद, हमारी प्रसिद्धि, हमारी संपत्ति यहीं रह जाएगी, लेकिन हमारे कर्म, हमारे मूल्य, हमारी सोच और हमारे द्वारा बनाया गया वातावरण आने वाली पीढ़ियों के जीवन को प्रभावित करता रहेगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और उनके बच्चे एक बेहतर दुनिया में जीवन बिताएं तो हमें आज से ही उस दुनिया का निर्माण शुरू करना होगा।
1: बिल्कुल,
0: यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: होगी और यही सच्चे स्वराज का मार्ग भी होगा।
1: जी हाँ, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की और अब देख पा रहे हैं कि समय उजला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी हाँ,
1: विदा जरूर लेंगे पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जोनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाक रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है बदलते मौसम में स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें। हम देखते हैं कि मौसम प्रकृति का नियम है।
0: जी हाँ।
1: कभी गर्मी बढ़ती है, कभी बारिश आती है, तो कभी सर्दी दस्तक देती है। लेकिन मौसम में अचानक होने वाले बदलाव हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं।
0: जी हाँ।
1: यही कारण है कि मौसम बदलते ही सर्दी, जुकाम, बुखार, एलर्जी, खांसी, वायरल संक्रमण, पेट की समस्या और त्वचा संबंधित परेशानियां बढ़ने लगती है।
0: जी हाँ।
1: ऐसे समय में श्रोता साथियों, यदि हम थोड़ी सी सावधानी बरतें और अपने स्वास्थ्य का सही ध्यान रखें तो कई बीमारियों से बच सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: तो आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि बदलते मौसम में स्वस्थ रहने के लिए किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल।
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं मौसम परिवर्तन का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि मौसम परिवर्तन का सीधा प्रभाव हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। तापमान, आर्द्रता और वातावरण में होने वाले बदलाव शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं।
1: जी हाँ,
0: कई बार हम देखते हैं कि शरीर अचानक हुए परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को ढाल नहीं पाता, जिसके कारण कई बीमारियों का खतरा है वो बढ़ने लगता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, बदलते मौसम में बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को विशेष सावधानी रखने की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल मनीषा,
0: इस समय संक्रमण तेजी से फैलता है और छोटी छोटी लापरवाहियां भी बड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है।
1: जी हाँ मनीषा, हम देखते हैं कि हमारा शरीर एक निश्चित तापमान और वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेता है, लेकिन जब मौसम अचानक बदलता है तो शरीर को नए वातावरण के अनुसार ढलने में समय लगता है।
0: जी हाँ,
1: उदाहरण के लिए गर्मी से बारिश के मौसम में आने पर संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
0: जी,
1: सर्दी शुरू होते ही खांसी और जुखाम की समस्या बढ़ जाती है। मौसम में नमी बढ़ने से बैक्टीरिया और वायरस जैसी चीजें जो हैं वो तेजी से फैलती हैं।
0: जी हाँ,
1: धूल और पराकरण बढ़ने से एलर्जी की समस्या हो सकती है, इसलिए बदलते मौसम को हल्के में लेना ठीक नहीं है।
0: जी
1: कहना
0: हाँ,
1: चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि स्वस्थ रहने की सबसे बड़ी कुंजी है मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता। जब हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है मनीषा, तो शरीर रोगों से बेहतर तरीके से लड़ पाता है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए संतुलित भोजन ले, मौसमी फल और सब्जियां खाएं, पर्याप्त पानी पिए, नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद जैसे फल शरीर को आवश्यक विटामिन और पोषक तत्व प्रदान करते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि बदलते मौसम में लोग अक्सर पानी भी कम पीते हैं। विशेष रूप से श्रोता साथियों, गर्मी के मौसम में आपको पानी का ध्यान रखना है।
1: जी जी,
0: हम देखते हैं कि पानी शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है और पाचन क्रियाओं को सुचारू रूप से बनाए रखता है। श्रोता साथियों, इसके अलावा यह शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। आपसे कहना चाहेंगे कि प्रतिदिन हमें कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, यदि साधारण पानी पीने से कठिनाइयां हो तो नींबू का पानी या नारियल पानी या चाच या हर्बल पेय का भी सेवन आप कर सकते हैं।
1: जी हाँ मनीषा, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि मौसम बदलने पर खान पान में भी बदलाव जरूरी है, इसलिए हमें ताजा और घर का बना भोजन खाना है। हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, दालें और अंकुरित अनाज खाना है, मौसमी फल, दूध और दही, ये सारी चीजें मौसम के अनुसार संतुलित मात्रा में हम ले सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: यही अब बात करें मनीषा कि क्या नहीं खाना है, तो हमें बासी भोजन, बहुत ज्यादा तला भुना खाना, खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थ और बहुत ज्यादा ठंडे पेय पदार्थ नहीं खाने हैं।
0: जी,
1: स्वच्छ और पौष्टिक भोजन शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करता है, इसलिए हमें हमेशा हमारे भोजन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि स्वच्छता स्वास्थ्य का आधार है। बदलते मौसम में संक्रमण श्रोता साथियों तेजी से फैलता है, इसलिए व्यक्तिगत और आसपास की स्वच्छता का हमें विशेष ध्यान रखना है।
1: जी जी,
0: भोजन करने से पहले और शौचालय के उपयोग के बाद हाथों को अच्छी तरीके से धोना है। घर, रसोई, आसपास के वातावरण को साफ रखना है। साथ ही श्रोता साथियों, गंदगी और जमा पानी से मच्छर और कीट पैदा होते हैं, जिससे हम देखते हैं कि अंजलि जी रोग हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं। तो श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि हमें अपने घर के आसपास और खुद के घर की और अपनी भी सफाई हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल मनीषा, कई लोग केवल गर्मियों में ही पानी पीने पर ध्यान देते हैं, जबकि हर मौसम में शरीर को पानी की जरूरत होती है। पानी शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकालता है और शरीर को संतुलित रखता है।
0: जी?
1: दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, साफ और सुरक्षित पानी का उपयोग करें, बाहर जाने पर पानी

0: की बोतल साथ रखें। कहना चाहेंगे कि स्वच्छता कई बीमारियों से बचाव का सबसे सरल उपाय है। भोजन से पहले और बाद में हाथ धोएं। शौचालय के उपयोग के बाद जैसा कि आपने बताया कि हाथ हमें अवश्य धोने हैं। इस तरीके से कुछ स्वास्थ्यवर्धक चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है। बरसात के मौसम में विशेष रूप से स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रमण तेजी से फैल सकते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि मनीषा, गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, नहीं बात करें पर्याप्त नींद लेने की, तो हम देखते हैं कि व्यस्त जीवन शैली में लोग अक्सर नींद को नजरअंदाज कर देते हैं।
1: जी हाँ।
0: लेकिन अच्छी नींद शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद ले, समय पर सोने उठने की आदत बनाए, देर रात तक मोबाइल और टीवी देखने से बचे। पर्याप्त नींद लेने से शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इसी के साथ कहना चाहेंगे मनीषा कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कि व्यायाम केवल शरीर को फिट नहीं रखता बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है।
1: जी हाँ।
0: सुबह टहले, योग करें, प्राणायाम करें, हल्की शारीरिक गतिविधियां नियमित रूप से करें। व्यायाम से शरीर सक्रिय रहता है और संक्रमण का खतरा कम होता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि बदलते मौसम में कहीं बीमारियां हैं वो तेजी से फैलने लगती हैं।
0: बिल्कुल।
1: इससे बचने के लिए श्रोता साथियों, हमें कुछ सावधानियां हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बाहर का अस्वच्छ भोजन हमें नहीं खाना है, दूषित पानी पीने से हमको बचना है। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर स्वच्छता का ध्यान रखना है हमें, किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें। साथ ही श्रोता साथियों समय समय पर डॉक्टर की सलाह लें और उनकी दवाइयों का सेवन करें। समय पर उपचार और सावधानी से गंभीर बीमारियों से भी बचा जा सकता है। अंजलि जी।
0: जी हाँ मनीषा, जैसा कि हम कार्यक्रम में बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत कर रहे हैं, तो यही श्रोता साथियों को बताते हैं कि अक्सर लोग मौसम के बदलाव को गंभीरता से नहीं लेते। सुबह और शाम ठंड हो तो हल्के गर्म कपड़े पहने, बारिश में भीगने से बचें, भीग जाए तो तुरंत सूखे कपड़े पहन लें। बच्चों और बुजुर्गों का हमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। छोटी सी सावधानी बड़ी बीमारियों से बचा सकती है।
1: जी हाँ।
0: कहना चाहेंगे मनीषा श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से कि स्वास्थ्य केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी होता है। तनाव, चिंता और अवसाद भी शरीर को कमजोर बनाते हैं। परिवार के साथ समय बिताएं, सकारात्मक सोच रखें, योग और ध्यान करें और अपनी पसंद की गतिविधियों में समय दें। खुश मन स्वस्थ शरीर की पहचान है।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कहना चाहेंगी कि बदलता मौसम प्रकृति का एक सामान्य चक्र है, लेकिन इसके दौरान स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियां भी बढ़ती जाती हैं।
0: बिल्कुल।
1: यदि हम संतुलित आहार, पर्याप्त पानी, नियमित व्यायाम, स्वच्छता और पर्याप्त नींद साथ ही सकारात्मक जीवन शैली को अपनाएं तो अधिकांश मौसमी बीमारियों से बच सकते हैं। बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर स्वास्थ्य वाले लोगों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। स्वच्छता के प्रति सजग रहकर और छोटी छोटी सावधानियों को अपनाकर हम मौसम परिवर्तन के प्रभावों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। वास्तव में श्रोता साथियों, रोग से बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है।
0: हाँ।
1: इसीलिए बदलते मौसम में सतर्कता, स्वच्छता और संतुलित जीवन शैली को अपनाकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सुखी और ऊर्जावान जीवन जिए।
0: बिल्कुल मनीषा, कहना चाहेंगे साथियों से कि स्वस्थ जीवन का रहस्य महंगी दवाइयों में नहीं बल्कि हमारी दैनिक आदतों में छिपा है। संतुलित भोजन, स्वच्छता, पर्याप्त पानी, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद और सकारात्मक सोच, ये सभी मिलकर हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। जब हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हैं तब हम न केवल स्वयं को स्वस्थ रखते हैं बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं। इसलिए हमें आज ही से यह संकल्प लेना है कि मौसम चाहे कोई भी हो, हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, जागरूक रहेंगे और दूसरों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाएंगे।
1: जी हाँ।
0: क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज ही एक समृद्ध और खुशहाल राष्ट्र की नींव होते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ।

0: जो गीत संगीत रहे हैं वो आपको अवश्य पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को
1: नमस्कार।

0: भाइयों बहनों, जरूर ग्राम सभा में बोले बोले हैं तो फैसला मजबूत था है। वन अधिकार सिर्फ कानून नहीं, माँ जंगल तक की जरूर बोले में रिश्तों है। जे जंगल में हमसे है ये उन्होंने रक्षा करा है। तो आओ बोला ने भागीदारी बढ़ावा, ग्राम सभा मजबूत बनावा, ने जंगल में भविष्य सुरक्षित करा। बोला ने आवाज विकास में असली पहचान है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
2: नाना अंजलि बुन हूँ था का?
1: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदी है ये रुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुके जागा।
2: ओ अंजलि बुन, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कह कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम समस्या समाधान हमरवा वरे अमर हित्ता भाई बुन ने आपनी बुन मनीषा ने आपनी बुन अंजलि नु
1: राम राम।
0: होवे भाइयों बोनो आप सब हमले रियो हो आपड़ू सामुदायिक रेडियो वागड रेडियो ने विदेश मिलव 8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर रहा हमारे आज ने कार्यक्रम समस्या समाधान में।
2: होवे भाई बोनो लेने हाजिर थे गये हो कार्यक्रम समस्या समाधान ने लेने एक ना विषय ने हाथ मनीषा बोन आज कार्यक्रम में अपनी भाइयों बोनो की बातचीत नु विषय है वधती सड़क दुर्घटना ने एना समाधान हो थई शके। आपणे देखो हो के सड़के विकास नी पहचान है पण आ सड़के लापरवाही नियमनी अनदेखी ने कारण घणा आकानी दुर्घटनाओ ने जन्म आ लीधे है। आ एक घणी चिंता नो विषय है कि आजना टाइम में आपणे देखो हो के हर रोज घणा का जे मनक है ई सड़क दुर्घटना ना शिकार थई जाय है। इनमें घणा आकाना जे मनक है एना नी जान भी चली जाय है। तो एवं में आपणे ईज जाणंगा के हर ते मनकनी अणी वात ने समझवू होगा कि सड़क दुर्घटना एक गंभीर समस्या बनती जई रही है ने आना समाधान ना उपाय हो थई शके।
0: होवे अंजलि बुन तो आना विषय माते आपड़े भाई बुने कती कार्यक्रम में घणा काने वाते रहेगा अबर हमला गीत ने मोरे करे आपड़ी वाते।
2: होवे तो भाई बुनो आप हमर तरह जो आपड़ो रेडियो आपड़ी वाते वागड़ रेडियो।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मई देखाय तो आपने आपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड थकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो। आज जीवन नो सहारो है। आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: इंतजार करी रू है, माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: तो साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को। नमस्कार।